नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: इस समय आप है हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देश से प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि उस सम्मान में है जो हम अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए महसूस करते हैं। हमारी धरती ने अनेक परंपराओं और संस्कृतियों को एक साथ जीना सिखाया है। आइए इस सुबह अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति गर्व और कृतज्ञता के भाव के साथ सुनते हैं एक सुंदर देशभक्ति गीत।

जब जब मन की वीणा पर भक्ति के स्वर झंकृत होते हैं, तब हर धड़कन में भगवान शिव का नाम गूंजता है। वे शिव हैं, संहार में सृजन, मौन में संगीत और तप में करुणा। समर्पित कर रहे हैं यह भजन महादेव के चरणों में।

श्याम का रंग ऐसा है जो तन पर नहीं मन पर चढ़ता है। एक बार जो इस प्रेम में रंग जाए फिर संसार पूरा ही कृष्णमय लगता है। मुरली की तान हो या श्याम की मुस्कान, हर सुर में प्रेम, हर धड़कन में भक्ति है। आइए इसी भक्ति के रंग में अपने मन को भिगोते हुए सुनते हैं ये भजन।

जब संसार की राहों में अंधेरा घिरता है तो राम नाम विश्वास का दीप बनकर राह दिखाता है। राम दीनों के सहारे हैं, भक्तों के रखवाले हैं और हर हृदय में बसे हैं। आइए अपने मन को राममय करें और श्रद्धा से पुकारें उस राम रमैया को।

अपने आराध्य के दर्शन की प्यास हो तो हर आंसू प्रार्थना बन जाता है और हर पल प्रभु की प्रतीक्षा। ईश्वर से मिलन की यही तड़प भक्ति को गहराई देती है और मन को निर्मल करती है।

0: लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: मनुष्य के जीवन में यदि किसी एक तत्व को सबसे निर्णायक शक्ति कहा जाए तो वो है प्रयास। प्रयास ही वो सेतु है जो स्वप्न और वास्तविकता के बीच दूरी को पाटता है। बिना प्रयास के न तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, न ही व्यक्तित्व का विकास। संसार का कोई भी महान कार्य, कोई भी उपलब्धि, कोई भी परिवर्तन, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, प्रयास के बिना साकार नहीं हुआ। प्रयास केवल श्रम नहीं है, बल्कि वह दृढ़ संकल्प, निरंतरता, साहस और आत्मविश्वास का समन्वित रूप है। प्रयास शब्द का सामान्य अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सचेत और निरंतर श्रम। परंतु इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। प्रयास केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक संलग्नता का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति, समय और क्षमता समर्पित कर देता है, तब वो सच्चे अर्थों में प्रयास करता है। प्रयास के तीन मुख्य स्वरूप माने जा सकते हैं। शारीरिक प्रयास, शरीर की शक्ति और श्रम द्वारा किया गया कार्य। मानसिक प्रयास, सोच, चिंतन, योजना और रणनीति बनाने का कार्य। तीसरा, आत्मिक प्रयास, आत्मबल, धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ना। इन तीनों का संतुलित समन्वय ही सफलता की कुंजी है। जीवन एक निरंतर संघर्ष है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक चुनौतियों का सामना करता है। यदि वो इन चुनौतियों से घबराकर बैठ जाए तो जीवन ठहर जाता है। प्रयास ही जीवन को गतिशील बनाए रखता है। प्रकृति भी हमें प्रयास का पाठ पढ़ाती है। बीज जब धरती के गर्भ में होता है तो वह अंधकार और दबाव को सहते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। निरंतर प्रयास के फलस्वरूप ही वह अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज प्रयास न करें तो वह सड़कर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी यदि परिस्थितियों के आगे हार मान ले तो उसका विकास रुक जाता है। प्रयास ही उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। जहां तक सफलता और प्रयास का संबंध होने की बात है तो सफलता और प्रयास का संबंध अत्यंत गहरा है। सफलता संयोग से नहीं मिलती, बल्कि वह निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने अथक प्रयास किया वही महान बने। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी असफलताओं से निराश क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते हैं। ये कथन बताता है कि सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी प्रयास का प्रेरणादायक उदाहरण है। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने निरंतर परिश्रम और समर्पण के बल पर भारत के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा की। उनका जीवन ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि प्रयास सच्चा हो तो ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास का विशेष महत्व है। कोई भी विद्यार्थी केवल बुद्धिमत्ता के बल पर सफल नहीं हो सकता है। नियमित अध्ययन, अनुशासन और अभ्यास ही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि मध्यम बुद्धि वाला विद्यार्थी यदि नियमित और ईमानदारी से प्रयास करे तो वो अधिक बुद्धिमान, किंतु आलसी विद्यार्थी से आगे निकल जाता है। परीक्षा में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, इन सभी के पीछे निरंतर प्रयास ही मुख्य कारण होता है। प्रयास आत्मविश्वास को जन्म देता है। जब व्यक्ति किसी कार्य में निरंतर मेहनत करता है तो उसे अपने कौशल और क्षमता पर विश्वास होने लगता है। यही विश्वास उसे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता भी प्रयास का एक हिस्सा है, जो व्यक्ति असफलता से सीख लेकर पुनः प्रयास करता है वही अंततः विजयी होता है।
0: ये था चिंतन। आलेख था प्रवीण साध का और वाचन राजेश जैन का। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दी जा रही है जल निकास के बारे में। आलेख और वाचन है तुलसा दरगैया का।
2: किसान भाइयोनी राम राम। किसान भाइयोनी बरसात को मौसम चली नो, बरसात का मौसम में पानी बहुत ज़्यादा पड़न, पानी ज़्यादा पड़ने से खेत न पानी पर भरी जाए, जिसका कारण हमारी फसल न पर उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ते कारण हमको जो फालतू को पानी रहे हमारा खेत में रहे उसको हमको खेत में से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि कभी पानी जमा होएगा तो रंध्रा अवकाश में जो हवा रहे उसका स्थान पानी ले लेगा, जिसका सी पौधा नख श्वसन क्रिया में बाधा पड़ेगा न पौधा मरी भी सकत। एक लेना जो अनावश्यक पानी रहे ओका खेत से बाहर निकाल देवा, तो फसल की पैदावार बढ़ाने का लेना जमीन की सतह से जो अतिरिक्त पानी रहे ओका हम कृत्रिम रूप से बाहर निकाला ओका हम जल निकास कवान। जल निकास को उद्देश्य ये रहे कि जो जब जमीन में पानी काफ़ी समय तक भरे रहे न ओका निकास को उचित प्रबंध नहीं कर पाता तो जमीन की भौतिक दशा बिगड़ी जाए, जिसका सी पौधा न की वृद्धि रुकना का कारण उपज कम हो। जमीन की भौतिक दशा सुधारना न जल निकास को उचित प्रबंधन करा, जिसका सी हमारी फसल की पैदावार में वृद्धि हुई जाए। जमीन की ऊपरी सतह पर पानी जमा रहने से जमीन की नीचे की सतह में हवा नहीं पहुंची पाती, पानी भरने का कारण रंध्रावकाश में जो उपस्थित हवा भी छे वो बुलबुला न का रूप में बाहर निकल जाए, जैसा सी हवा की कमी हुई जाए न जड़ न को विकास रुकी जाए न जड़ न उथली रह जाए न भोजन की प्राप्ति कम होने लगे न पौधा मुरझाने लगे। जल निकास को उचित प्रबंध करी देने से वायु को आवागमन अच्छा होने लगे। बहनोनी जिना क्षेत्र न में जल निकास की उचित प्रबंध नहीं होता है वहाँ की जमीन दलदली हुई जाए, जेका सी हमका कई कार्य जैसे कि जुताई बुआई निराई गुड़ाई करनू समय पर नहीं हुई पाते, न पौधा न ख उचित रूप से भोजन भी प्राप्त नहीं होने का कारण पौधा पीला पड़ने लगा, न ज़्यादा नमी होने का कारण फफूंदियों का

0: लगी जाए जेका सी कई प्रकार का रोग भी उत्पन्न हुई जाए। एका लेना जल निकालना का लेना उचित प्रबंध करना सी जमीन में नमी की कमी हुई जाए न भूमि दलदली होने से भी बची जाए। खेत में ज़्यादा समय तक पानी भरो रहना से सूर्य की जो अधिकांश गर्मी छे वो पानी का वाष्प बदलना में खर्च होती रहे जेका सी जो तापमान जमीन का मिलनु चाहिए वो नहीं मिली पाऊ तो न हमारी मिट्टी को तापमान गिरी जाए न पौधा न की अंकुरण न वृद्धि अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। जेका सी उपज में वृद्धि लाने वाले जो उचित जल निकास को प्रबंध करी न हम जमीन का तापक्रम का भी सही रखी सकें। निचली भूमि से हानिकारक लवण पानी का साथ घुले न जमीन की ऊपरी सतह पर आई जाए जो कि पानी का निकालना का उचित प्रबंध करने पर जमीन का बाहर नहीं जा पाता न हमारी जो भूमि रहे जो अम्लीय न क्षारी होने से बची जाए। खेत में पानी भरा रहने से हवा की कमी हुई जाए न पौधा की जड़ न सिकुड़ न लगे। उस समय श्वसन क्रिया आवश्यक तत्व तो जैसे ऑक्सीजन की कमी का कारण वो बंद हुई जाए जेका सी प्रचंड वायु की गति होने पर पौधा नष्ट हुई जाए न श्वसन की क्रिया संपन्न करना का लेना पौधा न का नष्ट होने से बचावना का लेना हमको उचित जल निकास को प्रबंधन जरूर करना चाहिए। ज़्यादा समय तक खेत में पानी एकत्रित रहने से जमीन में नमी ज़्यादा हुई जाए इन क्षेत्र न पर कृषि क्रिया ने जैसे कि जुताई बुआई समय पर नहीं हुई पाती जेका कारण पौधा न की वृद्धि न फसल की उपज पर भी बुरो प्रभाव पड़े। जल निकास को उचित प्रबंधन करने से हमारा जो भी कृषि संबंधी कार्य छे उस समय पर हुई जाए न हमारी जो उपज छे ओका में भी वृद्धि आवे। बहनों जब पानी भरे रहे तो जमीन में जो उपस्थित जीवाणु रहे उनका भी हवा मिलनु बंद हुई जाए जेका से जीवाणु अपनी क्रिया बंद कर दे न नष्ट होने लगी जाए। जल निकास का द्वारा पानी बाहर निकल जाने से पौधा न का इन मित्र जीवाणु न का हवा प्राप्त होने लगी जाए न उनकी कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई जाए न कृषि की उपज भी बढ़ी जाए। जड़ वाली भूमि में नत्रजन जीवाणु नाइट्रेट का तोड़ी न नत्रजन को स्वतंत्र कर दे जेका सी जमीन में नाइट्रोजन की कमी होने लगे न जेका हम जल निकास का द्वारा रोकी सकें। जब खेत में पानी भरे रहे तो ओका में हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हुई जाए जो पौधा न भोजन ग्रहण करी ले जेका सी पौधा मुरझाना लगी जाए। तो भाई बहनों हम सब ई बात को ध्यान रखांगा तो कभी समय समय पर हम अपना खेत में से पानी निकालता रहवांगा तो हमारा जो पौधा से मुरझाना का भी नहीं पौधा न का हवा भी अच्छी मिलेगा घाम भी अच्छा मिलेगा न हमारा पौधा न की जो वृद्धि से वो भी अच्छी होएगा। किसान भाई बहनों ने हमारा आपसे यज कहना था।
1: खेती की बातें में अभी आपने जाना जल निकास के बारे में। आलेख और वाचन था तुलसा दरगैया का। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 7:20 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। सुबह 8:30 होगा फिल्म संगीत। आज सुबह 9:00 पेश किया जाएगा मराठी कार्यक्रम। इसमें आज का आकर्षण है सुषमा अवधूत का कविता पाठ। शास्त्रीय संगीत के तहत आज सुबह 9:30 प्रसारित करेंगे अब्दुल हमीद का वायलिन पर बजाया राग मियां की तोड़ी। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत ही रात 10:30 सुनवाएंगे अभिषेक का गिटार पर बजाया राग यमन।

0: श्रोता अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में सुबह 10:05 से। सुबह 11 से दिन के 3 तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 होगा फोन इन कार्यक्रम, 12:30 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, 1 होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 12:00, 2:00 और फिर 2:30 पर। हमारी शाम की सभा शुरू होगी युवाणी कार्यक्रम के साथ 5:00। 5:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 4 के स्वर में सुगम संगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:30। शाम 7:20 पर ग्रामीण बहनों के लिए होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात 9:30 दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन प्रस्तुत किया जाएगा रात 10:00। ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47.2 यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे, विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53.4 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14.2 षड्विंशत्युत्तर 2000 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमानसेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजु अन्तर्राष्ट्रिय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासां विमानसंकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77 सहस्र वर्ग मीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेक इन स्थानकानि 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन यूजीसी नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17

0: पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे हमारे भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, भोपाल को खेलों की राजधानी बनाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कल दी गई श्रद्धांजलि। इंदौर में प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, भोपाल में हुआ प्रतिमा का अनावरण। नाग पंचमी पर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले। और जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीते कुछ सालों से भोपाल में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार भोपाल को खेलों की राजधानी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कल राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप राष्ट्रीय रैंकिंग के तीसरे संस्करण के समापन पर चैंपियनशिप की विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की टीम ने 20 मेडल हासिल कर पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स कंपनी गोवा की टीम ने दूसरा स्थान और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब सिकंदराबाद की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कार्य पद्धति से आमजन में स्वीकार्यता प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी पद दे सकती है, पदाधिकारी बना सकती है, जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, लेकिन नेता हमेशा जनता बनाती है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी की प्रेरणा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इंदौर के दशहरा मैदान में लगाई जाएगी। कल उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से यह प्रतिमा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग 4 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आधारशिला समारोह में कहा कि प्रतिमा न केवल एक स्मारक होगी बल्कि अटल जी के विचारों और को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी।
1: केंद्र बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ और पार्वती कालीसिंध चंबल ये पूरी योजना से राजस्थान जब मैं यहाँ

0: अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं। तो एक और चार नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि पूजन हुआ।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य का विषय उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन में नाग पंचमी पर रात 12 बजे नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए। वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले मंदिर में पट खुलने के बाद लगातार 24 घंटे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद उन्होंने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, यानी पानी की मुख्य टंकी से लेकर नल तक पानी के पूरे आपूर्ति के दौरान उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। पानी के पुराने और जर्जर भंडारण टैंकों को तेजी से बदलकर नए टैंक लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने जल स्रोतों और आउटलेट बिंदुओं पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं, अभिभावकों और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही युवा नशा मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल कल लोकभवन में पुलिस, नगर सेवा और नागरिक सुरक्षा के पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने प्रदेश पुलिस के उन सभी कर्मवीरों का अभिनंदन किया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और विशिष्ट सेवाओं से मध्य प्रदेश पुलिस और प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, पर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेगी। आयुष शेट्टी का सामना विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन चीन के शियू कुई से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली जाएगी। दमोह जिले में कल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर नोटहा से लेकर दमोह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिंडौरी जिले के बिलगांव बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए आज सुबह 8 बजे 2 बांध के 2 गेट खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह कल आज से 2 दिवसीय आगरमाला

वा जिले के भ्रमण पर रहेंगे। शिवपुरी में युवा संगम कार्यक्रम 20 अगस्त को शासकीय एलएसजी के महाविद्यालय पोहरी में आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश स्तर पर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। भिंड जिले में 30 एमपी बटालियन एनसीसी और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से सीएटीसी कैंप में सह प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: good morning, good morning,
1: good morning, Indore.
2: Good morning, Indore.
3: गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा व्यास का नमस्कार। श्रोताओं, त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते, ये तो वो पल होते हैं जब घर आंगन खुशियों से भर जाते हैं, मन में आस्था और रिश्तों में अपनापन घुलता है। और जब सावन आता है तो जैसे प्रकृति भी भक्ति का रंग ओढ़ लेती है, चारों ओर हरियाली, रिमझिम फुहारे, तीज त्योहार की रौनक और शिव भक्ति में डूबा हुआ वातावरण, बस यही तो है सावन।

श्रोताओं, सावन का महीना आते ही मन में एक अलग ही उल्लास जाग उठता है, घर में, मंदिर में और कावड़ उठाने वाले हर भक्त के मन में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। हरा।

वैसे तो श्रोताओं, शिव भक्तों के लिए सावन का हर दिन विशेष होता है, पर सोमवार का अपना ही महत्व है। कोई शिवालय में जल चढ़ा रहा है, तो कोई बेल पत्र अर्पित कर रहा है, तो कोई अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़ा है।

0: सावन के इस पावन महीने में जब बात हो उज्जैन के बाबा महाकाल की, तो भक्ति का रंग और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सावन में बाबा महाकाल स्वयं अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रास्तों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, डमरू और ढोल की थाप गूंजती है और पालकी में विराज कर बाबा महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने निकलते हैं। कितना अद्भुत होता होगा ये नजारा श्रोताओं। आइए इस सावन माह में निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी के बारे में जानते हैं पुजारी महेश जी से।
1: महाकाल आज मन महेश स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मन को जो मोल है वो मन महेश है। साल भर तक भक्त लोग आज का इंतजार करते हैं। बाबा महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार भगवान महाकाल ही ऐसे देवता जिनको घाट ऑफ ऑनर दिया जाता है। घाट ऑफ ऑनर के साथ में बाबा महाकाल की पालकी उठी है नगर भ्रमण के लिए। जो भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ सकते हैं, जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, जो जिनकी मान्यता होती है कि भगवान के दर्शन कर कर ही हम हमारा उपवास तोड़ते हैं किंतु मंदिर में नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए प्रजा के हाल चाल जानने के लिए, प्रजा को दर्शन देने के लिए महाकाल निकले हैं। और शिप्रा मैया के यहाँ भगवान महाकाल की, शिप्रा मैया की पूजन अर्चन की गई है और पुनः इसी क्रम में बाबा महाकाल उज्जैन महाकाल मंदिर में आएंगे।
0: श्रोताओं, आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार तो है ही, साथ ही नाग पंचमी का पर्व भी है। बाबा महाकाल की शाही सवारी के बाद आपको लिए चलते हैं उज्जैन के ही श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर में। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित ये मंदिर वर्ष में एक विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलता है, सिर्फ नाग पंचमी यानी आज ही के दिन। नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं जितनी प्राचीन है ना, उतनी ही रोचक है। श्रोताओं, हमारे साथ है नाग चंद्रेश्वर मंदिर के आचार्य श्री विनीत गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी धन्यवाद।
0: पुजारी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार ही खुलता है, तो इस मंदिर के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए, ऐसा क्यों है?
2: ये हमारी अनादिकाल की परंपरा है। यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर का जो दिव्य मंदिर है उसमें तृतीय तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर का विग्रह उपस्थित है, जो कि एकमात्र विग्रह है जहाँ पर शेष सैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है।
0: जी जी।
2: और इस तरह के विग्रह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसी मान्यता रही है कि जो भी भगवान नाग चंद्रेश्वर का दर्शन करता है उसको कई तरह के दोष श्राप जो उसकी कुंडली में होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और एक दिन के लिए ही ये पट खुलते हैं, 24 घंटे के लिए। नाग पंचमी को रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे और फिर त्रिकाल पूजा की परंपरा है, वो त्रिकाल पूजा होती है और उसके पश्चात 24 घंटे दर्शन के पश्चात में फिर पट बंद हो जाते हैं एक साल के लिए।
0: बहुत ही मान्यता लिए हुए है ये मंदिर और काफी लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है, तो नाग पंचमी के दिन तो बहुत भीड़ होती होगी भक्तों की।
2: जी बिल्कुल, 8 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं हर वर्ष।
0: जी जी, इस मूर्ति के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? काफी अद्भुत मूर्ति है, जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे पूरे भारत देश में ऐसी मूर्ति बहुत कम है, जहाँ पर शेष शैया पर भगवान शिव जी हैं बिल्कुल विष्णु जी की भांति और उनका पूरा परिवार मौजूद है, तो ये बहुत अद्भुत मूर्ति है।
2: जी जी बिल्कुल, एकमात्र ये विग्रह देखने को मिलता है जहाँ पर शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। और बहुत सारी उसमें विशेषता है जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा के पथिक है उनको ज्ञात है। और विग्रह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है। ऐसा विग्रह कहते हैं कि नेपाल में भी एक जगह है, हमने तो नहीं देखा है लेकिन कुछ लोगों का अनुभव है कि नेपाल में दूसरा इस तरीके का एक विग्रह है, तो एक भारत में तो एकमात्र ये विग्रह देखने को मिलता है।
0: तो नाग पंचमी के दिन क्या विशेष होता है यहाँ पर?
2: विशेष भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन अर्चन जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है, और नाग पंचमी पे जैसा कि है हमारे यहाँ तवा वगैरह नहीं चढ़ता है, तो उस तरीके की जो मान्यताएं हैं उसमें पारंपरिक मान्यताओं का अनुपालन होता है। मध्य रात्रि 12 बजे पट खोले जाते हैं, भगवान नाग चंद्रेश्वर का षोडशोपचार पूजन।

0: विसर्जन किया जाता है और उसके पश्चात में सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाता है, जो कि 24 घंटे निरंतर दर्शन करते हैं।
1: तो भक्तों की भीड़ कितनी बजे से आना शुरू हो जाती है?
0: हाँ, रात्रि 12 बजे से भक्त आने शुरू होते हैं और अगली रात्रि 12 बजे तक चलते हैं, पूरे 24 घंटे दर्शन चलते हैं।
1: वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ परंपराओं को, तीज त्योहारों को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और चूंकि नाग पंचमी का दिन वैसे ही बहुत खास है क्योंकि ये मंदिर पूरे वर्ष में एक बार खुलता है, तो जाहिर है कि भक्तों का जो जन सैलाब है वो भारी मात्रा में होता है यहाँ पर।
0: निश्चित रूप से जो लोग आ सकते हैं उनको दर्शन करना चाहिए भगवान नागचंद्रेश्वर का, और जो आने में सक्षम नहीं है जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ करके भगवान नागचंद्रेश्वर का ध्यान करे, बाबा महाकाल का ध्यान करे। सावन का पवित्र मास है, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी शुभकामना है।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और कोई संदेश जो भक्तों को आप कहना चाहते हैं?
0: बस भगवान का सब ध्यान करें, भजन करें और अपने अपने जीवन के उत्थान की ओर अग्रसर हो, यही मेरी शुभकामना है। भगवान महाकाल सबको स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी धन्यवाद आपको भी बहुत।

आज हमारी बात सिर्फ नागपंचमी तक सीमित नहीं रहेगी श्रोताओं, क्योंकि अगस्त का महीना हमें एक और खूबसूरत अवसर देता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का। जी हाँ श्रोताओं, सोचिए, सावन की हरियाली, मंदिर की घंटियाँ, झूले पर मुस्कुराते हुए चेहरे, बारिश की पहली बूंदे और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, अगर इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया जाए तो सालों बाद भी ये तस्वीरें हमें उसी मौसम में वापस ले जाती है। कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है, लेकिन तस्वीरें वक्त को थाम लेती है।

0: श्रोताओं, तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे अपने भीतर एक कहानी, एक एहसास और एक पूरा पल समेटे हुए होती है। और जब बात उन पलों को कैमरे में कैद करने की हो, तो इंदौर के जाने माने फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट श्री अखिल हार्डिया जी का नाम खास तौर पर लिया जाता है। EFIAP, EFIP गोल्ड और FIIPC जैसे प्रतिष्ठित डिस्टिंक्शन से सम्मानित अखिल जी को वर्ष 2015 में नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो आने वाले वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के खास मौके पर उनसे जानते हैं तस्वीरों के पीछे छिपी कहानियों की दुनिया को। तो बहुत बहुत स्वागत है अखिल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
2: अखिल जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ और इस सफर ने आपको यहाँ तक कैसे पहुँचाया।
1: इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जो फोटोग्राफी का शौक लगा या पैशन बना या कहिए कि रुचि जो जागृत हुई वो मेरे फादर की वजह से हुई। मेरे पिताजी भी थोड़ी बहुत फैमिली फोटोग्राफी करते थे,

0: और उनको मैं देखा करता था और उनको देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ, और बाद में मेरे में भी वही चीज डेवलप होने लगी और उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैमरा भी दिला दिया और मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। वो जमाना तो फिल्म वाला होता था, स्टूडियो पे जाके रोल धुलवा के और प्रिंट बनवाना पड़ता।
1: तो अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे आप?
0: मेरा पेशन जो था उसी में मुझे चल के नौकरी प्राप्त हुई। जब अखबार शुरू हो रहा था 1983 में, तो अखबार शुरू होने के पहले कुछ मेरे शौकिया फोटोग्राफ दिया करता था, उसको देखकर और मुझे अखबार में एज ए प्रेस फोटोग्राफर काम करने के लिए ऑफर दिया गया, मुझे बुलाया गया और मुझे भी ऐसा लगा कि इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो मैंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने नेक्स्ट डे से ही मुझे असाइनमेंट देने शुरू कर दिया।
1: तो आप बहुत प्रतिष्ठित अखबार से काफी वर्षों तक जुड़े रहे।
0: जी, रिटायर होने तक जोड़ा रहा लगभग 28 साल।
1: क्या बात है। आपकी नजर में एक अच्छी तस्वीर की सबसे खासियत क्या होती है? तकनीक, सही समय या फिर तस्वीर के पीछे की कहानी?
0: तकनीक तो है ही मैडम, सबसे पहले तकनीक ही आती है। यदि हमें सही फोटोग्राफ लेना नहीं आएगा, कैमरे में कुछ सेटिंग होते हैं, उस लाइटिंग के हिसाब से हमको कैमरा कैसे सेट करना चाहिए। अभी के जमाने में तो ऑटोमेटिक कैमरे आ गए हैं, उनसे बहुत कुछ हमें कुछ भी सेट नहीं करना होता, सिर्फ एक फ्रेम बनानी होती है और फोटो खींच लेना होता है। पर फिर भी आज के कैमरों में भी डिजिटल जिनको कहते हैं, उनको भी यदि हम सही तकनीक से या उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको यूज करके फोटोग्राफ करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। बात रहती है कहानी की, तो कहानी जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि एक फोटोग्राफ जो है 1000 शब्द के बराबर होता है। यहाँ थोड़ा सा रेक्टिफाई में ये करना चाहूंगा कि हर फोटोग्राफ में कुछ शब्द जरूर छुपे होते हैं या कुछ कन्वे जरूर करता है, लेकिन अगर फोटोग्राफर क्या दिखाना चाहता है ये और सीख गया तो ये सोने में सुहागा है।
1: बिल्कुल। आपकी कई सारी तस्वीरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, तो किसी एक तस्वीर का अनुभव आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
0: ऐसे तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन लेकिन एक मेरा एक वाइल्ड मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो एक वाइल्ड लाइफ तस्वीर की ही बात करता हूँ जिसमें एक किंगफिशर बर्ड जो होती है वो पानी में से मछली निकाल के शिकार लेके आती है, तो लेके उड़ती है वापस पानी में से, लेके ऊपर उड़ती है और किसी न किसी एक जगह पर जाकर बैठकर वो उसको निगल लेती है,
1: अच्छा।
0: चबाती भी नहीं निगल लेती है। लेकिन लेकिन मेरी तस्वीर एक ऐसी है जिसमें वो फिश को लेके आ रही है और जस्ट वहां पर बैठने वाली है, मतलब ऐसा एक्शन है कि बस उसने पंजे ऐसे खोले हैं और बैठने वाली, और बैठने वाली है। उसके साथ में उस चित्र में एक और बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि उसने जो फिश को चोंच में दबाया, तो दबाने से हालांकि वो देखने में खराब हो सकता है, किसी को खराब लग सकता है, लेकिन उसके अंदर से अतड़ी अतड़ी सोड़ी बाहर निकल आई थी, इतनी जोर से उसने पकड़ के रखा था। ये पूरा उस फोटोग्राफ में दिख रहा था, वो मुझे बहुत अच्छी तस्वीर लगती है। सही एक्शन जो मैं लेना चाहता था वो उसमें आ सका। जी
1: वाकई
0: हाँ,
1: में उस पल को आपने जिस तरह से कैद किया, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ख्याति मिली है सर आपको।
0: जी हाँ, जी हाँ। मुझे 3 तो इंटरनेशनल ऑनर मिले हुए हैं जिनको हम डिस्टिंक्शन कहते हैं, जैसे हमारी डिग्री होती है एजुकेशन में, उसी तरह से मुझे फोटोग्राफी की डिस्टिंक्शन मिली हुई है, और अपने देश की भी 2 बड़ी संस्थाएं हैं उनकी सर्वोच्च वाली डिग्रियां मैंने हासिल की हुई हैं। आज नेशनल और इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में मुझे एज ए जूरी चुना जाता है, मुझसे कंसेंट ली जाती है और मैं उनको जज करता हूँ।
1: बहुत
0: हाँ जी,
1: खुशी हो रही है आपसे बात करके। आज बहुत सारे युवा हैं जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? कितनी संभावना है इस क्षेत्र में?
0: नहीं देखिए, बहुत संभावना है इसमें। करियर बनाना यानी उससे फोटोग्राफी से अर्निंग करने की आप बात कर रहे, बिल्कुल कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में कैमरा तो डिजिटल है ही, साथ ही हमको इंटरनेट की फैसिलिटी और सोशल मीडिया ऐसा मिल गया है जिसकी वजह से उस फील्ड में भी हम इनकम कर सकते हैं।
1: तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमारे श्रोताओं और युवाओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से?
0: मेरी तरफ से सबसे बड़ा संदेश यही है, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, ट्रैफिक के नियम फॉलो करना सीखते हैं, उसी तरह से फोटोग्राफी के भी कुछ नियम रूल और कैमरे को कैसे ऑपरेट करना के अंदर क्या क्या खूबियां दी हैं जिनसे हम बेहतर फोटोग्राफ ले सकते हैं, पहले उन खूबियों को समझ लें और उसके बाद में आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। भले कैमरा ऑटोमेटिक है लेकिन उसमें मैनुअल सेटिंग भी होती हैं जिनसे आप जैसी तस्वीर चाहते हो वैसी खींच सकते हो। यदि हम कैमरे की बारीकियों को समझ लेंगे, भले वो मोबाइल का कैमरा हो या आज का डिजिटल कैमरा हो जिसमें DSLR भी हो सकता है, मिररलेस भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं उनको आप समझ लें तो आपके फोटोग्राफ बहुत बेहतर हो सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा अखिल जी आपसे बात करके। वाकई में हमारे जो श्रोता है उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत जो आज कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं।
0: जीवन से भरी तेरी आंखें,
1: क्या बात है,
0: बहुत अच्छा गाना लगता है, दो चार दिन में एक बार तो सुन ही ले।
1: तो चलिए कार्यक्रम में भी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। मेरे साथ एक बार कहिए गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में अब मिलते हैं गुरदास दुआ जी से। श्रोताओं, आपको बता दूं कि 38 वर्ष से फोटोग्राफी के क्षेत्र में सक्रिय इंदौर के वरिष्ठ फोटोग्राफर गुरदास दुआ अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाकर न केवल इंदौर का बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुरदास दुआ जी ऑनररी FIIPC FPASP, AFIP, FBAF, ऑनररी SAP, ADCC और PSP जैसे कई फोटोग्राफिक सम्मानों से अलंकृत हो चुके हैं। साथ ही फोटोग्राफी अकादमी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। श्री दुआ 5 बार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार के साथ सैकड़ों अन्य पुरस्कारों के विजेता रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में आपका।
1: थैंक यू सुषमा जी, मेरे को यहाँ आकाशवाणी में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गुरदास जी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो क्या आपको याद है कि आपने अपना पहला कैमरा कब उठाया था और वो तस्वीर याद है आपको?
1: विश्व फोटोग्राफी दिवस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यों मनाया जाता है। 1839 में फ्रांस में इसका जन्म हुआ और 19 अगस्त 1839 को ये डिक्लेयर हुआ कि फोटोग्राफी का जन्म हो गया, इसलिए 19 अगस्त को हम फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। जब हम फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं तो ये इंदौर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में फोटोग्राफी का जन्म हुआ वो इंदौर में हुआ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है।
0: क्या बात है, वाकई में।
1: हाँ, और 1866 में महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय के स्टाफ में एक ड्राफ्ट्समैन थे लाला राजा दीनदयाल। वो एक्चुअली महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय उनके पैट्रन थे और उन्होंने पहली बार लाला राजा दीनदयाल को सर हेनरी डेली, जिन्होंने डेली कॉलेज की स्थापना करी, जिन्होंने डेली कॉलेज बनाया, उनसे इंट्रोड्यूस

0: बस लगी थी और एक स्टेज के ऊपर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट इज गुरदास दुआ, तो मेरे को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ और वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे उछल पड़ा मैं तो वो दिन मेरे को नहीं भूलता है। और तब ऐसा हुआ कि शायद मेरी पिक्चर्स में कुछ ऐसा दम है, तभी मेरे को ये रिकॉग्निशन मिला, तो उससे एक बड़ा मोटिवेशन मिला। उसके बाद तो जुनून की हद तक फोटोग्राफी करी है मैंने।
1: उसी वक्त तो मतलब निश्चित हो गया था कि मैंने जो राह चुनी है वो बिल्कुल सही चुनी है, और इसी राह की ओर मुझे अग्रसर होना है।
0: बिल्कुल।
1: और आज जो मुकाम आपने हासिल किया है वो तो बहुत बड़ी बात है। आपके अनुसार हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी तस्वीर और एक यादगार तस्वीर में क्या फर्क होता है?
0: अच्छी तस्वीर वो होती है जिसमें सब्जेक्ट मैटर स्ट्रांग हो, इंटरेस्टिंग हो, उसमें क्रिएटिव कॉम्पोजिशन हो, क्रिएटिव लाइटिंग हो, जिसको देख करके कोई भी वाह कर सके कि वाह क्या पिक्चर है ये हुई एक अच्छी तस्वीर। और यादगार तस्वीर होती है कि आपके जीवन का कोई ऐसा पल जो आप हमेशा याद रखना चाहते हैं उसको कैद कर लिया गया हो, वो यादगार पल होता है जो कि कैमरा कैप्चर करता है, या जिसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, जैसे आपके किसी के माता पिता जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनका एक चित्र खींचा गया है और उसको देख करके आप हमेशा उनको याद करते रहते हैं, भले उसमें कलात्मकता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो यादगार चित्र है। और अच्छा चित्र जिसमें कलात्मकता हो, जिसको देख करके दिल खुश हो जाए, ये दोनों में फर्क।
1: क्या लगता है आपको कि इंदौर के युवाओं में आप कितना उत्साह देखते हैं फोटोग्राफी को लेकर?
0: आजकल जो मोबाइल फोटोग्राफी आ गई है ना, उससे युवा बहुत उत्साहित है, और मोबाइल फोटोग्राफी से फोटोग्राफी करने वाले को मैं फोटोग्राफर नहीं कहता, मैं उसको क्लिकर बोलता हूँ।
1: अच्छा। हाँ हाँ।
0: जो कैमरे से जो फोटोग्राफी होती है
1: उसकी तो बात ही अलग होती है।
0: नहीं तो उसमें सब सेटिंग्स आपको सीखनी होती है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, ये सब आपको सीखना पड़ता है।
1: और मोबाइल में तो ऑटोमेटिक सब होता है, सेट किया हुआ होता है,
0: एम शूट होता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: आपने बस सामने एम किया और आपने शूट कर लिया।
1: बिल्कुल।
0: तो वो क्लिकर है, और फोटोग्राफर जो होता है सारे कैमरा सेटिंग्स को ध्यान में लेकर के जो पिक्चर बनाता है उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करता है, मतलब ऐसी चीजें जो वो करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, वो फोटोग्राफर के दायरे में होती है। वो उस जो जैसी पिक्चर बनाना चाहे वैसी पिक्चर उसकी बन सकती है। तो ये फोटोग्राफर में और इसमें होता है। तो लोग उत्साहित, यंगस्टर्स जो हैं मोबाइल में फोटोग्राफी में तो ज्यादा उत्साहित होते हैं, पर कैमरे पे सीखने के लिए, क्योंकि कैमरा आजकल बहुत महंगा भी है।
1: हाँ।
0: तो इसलिए उतनी अप्रोच हर युवा नहीं कर पाता है। कुछ परसेंटेज, 5-10% हम कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं और उस तरफ उनका रुझान है।
1: आपने ना बहुत सारे मुकामों को हासिल कर लिया है, तो कोई और इच्छा है अभी मन में बताइए?
0: इच्छा तो देखिए कभी मरती नहीं,
1: फोटोग्राफी को लेकर
0: ये दिल मांगे मोर फोटोग्राफी में मैंने हालांकि विदेशों में भी फोटोग्राफी करी है, पाकिस्तान में मैंने फोटोग्राफी करी है, दुबई में, USA के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर, बहुत कंट्रीज में गया हूँ। तो मेरा ऐसे कुछ कंट्रीज और हैं जहाँ पर जाकर के मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, जैसे वियतनाम है, बाली है, कंबोडिया है, तो ऐसे जगहों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर जाकर के मैं एक अलग दर्जे की फोटोग्राफी करूँ।
1: और पुरस्कारों की अगर बात करें तो उसमें कोई है इच्छा, कोई मन में है?
0: नहीं, पुरस्कार मैंने पूरे जिंदगी भर में, मेरे अभी तक इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ प्रदर्शित हो चुके हैं, 5 बार मैं नेशनल अवार्ड विनर रहा हूँ, 100 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मैंने अभी तक जीते हैं, तो इसलिए पुरस्कारों की तो बहुत ज्यादा इच्छा है नहीं। अब तो मैं ज्यूरी का रोल ज्यादा अदा करता हूँ, इंटरनेशनल फोटो कॉन्टेस्ट जैसे हीपा होता है दुबई के अंदर, जिसमें 7 करोड़ रुपए के हर साल पुरस्कार होते हैं, उसकी मैंने जजिंग करी है। ओएसिस इटली में मैंने जजिंग करी है, दोधो मैगजीन के लिए स्पेन में मैंने जजिंग करी है, तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम है जिसकी मैं जजिंग करता हूँ। तो अब तो पुरस्कार देने का काम है, लेने का नहीं
1: यानी मतलब फोटोग्राफी को बस अब जज करना है, जब देखना है कि जो आजकल के युवा है वो सही दिशा की ओर जा रहे या नहीं, फोटोग्राफी में अगर कोई कमी है उनकी, उनके काम में कोई कमी है, तो आप उनका सही मार्गदर्शन करें।
0: अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी अलग है, मेरे को यूथ को या जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं उनको एजुकेट भी करना है, और वो मैं करता रहा हूँ कई सालों से। मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करता हूँ, जिस ब्रांड के लिए मैं कैमरा कंपनी के बहुत बड़ा ब्रांड है उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनकी मैं वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया होती हैं, उनमें हम जाकर के हम फ्री

0: वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें काफ़ी यूथ लोग आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और जो भी मेरे से सीखना चाहता है उसको मैं अपनी गाइडेंस देता रहता हूँ।
1: क्या बात है गुरदास जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी तस्वीर को खींचने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ा हो, या कोई ऐसी यादगार घटना जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे?
0: ऐसी कई कई फोटोग्राफ है जिनको खींचने के लिए मेरे को घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एक फोटोग्राफ नहीं है। जैसे कि मैं हिमालय के अंदर हूँ, सनराइज अभी हुआ नहीं है, माउंटेन पे लाइट आई नहीं है, घंटों हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर लाइट आए तब खींचेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे चित्र हैं। पर जो घटना की बात आप कह रहे हैं, वो जो घटना अगर मैं आज भी याद करता हूं तो मैं पूरा हिल जाता हूं ऊपर से नीचे तक। मैंने अपनी मेरी लाइफ जो है मैंने रिस्क पे लगा दी थी एक बार फोटोग्राफी करने में। तो एक बार मैं जब लेजर लैब में जब मैं गया, तो वो लेजर की जो मशीन थी उसके आगे एक फायर ब्रिक रखी हुई थी, और जो बीम पड़ रही थी तो फायर ब्रिक को गला देती थी, उसकी इतनी हीट होती है। उसको मेरे को उस मशीन को फोटोग्राफ करना था।
1: अच्छा।
0: और मैं अपनी फोटोग्राफी में इतना खो गया था कि जो बीम का जो एरिया है उसके अंदर मैं एंटर हो रहा था फोटोग्राफी करते करते, और मेरा एक स्टेप आगे होता और मैं पूरा भस्म हो जाता। तो उनका जो असिस्टेंट है मेरे पीछे खड़ा था, उसने मेरा बांह पकड़ के मेरे को खींच लिया और मेरी लाइफ बच गई।
1: इतना ज्यादा रिस्क होता है।
0: रिस्क मेरा हमेशा युवाओं से, जो फोटोग्राफर्स हैं उनको यह संदेश है कि फोटोग्राफी करिए, पर इतना भी मत खो जाइए फोटोग्राफी में कि अपनी आप लाइफ रिस्क पे लगा दें। आजकल कई ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं कि लोग मोबाइल खींचने के लिए एज पे चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। तो कभी भी अपनी लाइफ को रिस्क लगा करके, या इतने जुनून में, इतना भी जुनून ना हो कि आप सुध-बुध खो बैठे अपनी, तो ध्यान लगा करके फोटोग्राफी करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आजकल युवाओं को ये समझना होगा कि फोटोग्राफी अपने शौक के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी
0: बरती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कोई संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे आप?
0: फोटोग्राफी आप करें तो पूरी लगन से करें, और कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें फोटोग्राफी के लिए। अकेले चलने में राह नहीं मिलेगी, किसी को गुरु बनाएं, या किसी संस्था के साथ में आप अटैच हो जाएं, या किसी एस्टेब्लिश फोटोग्राफर के साथ में आप कॉपरेट, उसके साथ में उसको असिस्ट करें, तो आपको आराम से एक राह मिल जाएगी।
1: बिल्कुल, मतलब आप किसी को अपना गुरु बनाइए और लग जाइए फोटोग्राफी के लिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लगा गुरदास जी आपसे बात करके, वाकई में। अब हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत जो आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं।
0: सावन का महीना है, और मेरे को सावन के ऊपर ही मुकेश का गाया एक गीत बहुत पसंद है, सावन का महीना पवन करे शोर।
1: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सुनवाते हैं आपको ये बहुत खूबसूरत सा गीत मुकेश जी की आवाज में। मेरे साथ एक बार कहिए, गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सुषमा व्यास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
7: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है।

0: इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, न इंटरनेट न बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA टू रिकंडक्ट UGC नेट एग्जाम्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स फॉलोइंग कंप्लेंट्स ऑफ एरर्स इन दीज पेपर्स। प्रोटेस्टिंग झारखंड स्टूडेंट्स टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स विद स्टेट गवर्नमेंट इन रांची टुडे। IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
7: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
6: The National Testing Agency NTS announced retests for three papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTS said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in Shift 2. The Sociology paper will be held on 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for assistant professor and admission to PhD programs. NTA had formed a committee to inquire into and look into these errors. The committee recommended that in the interest of holding a fair and error-free examination, these three papers should be reconducted. JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has entered its 24th day, with students intensifying the protest over alleged irregularities in recruitment examinations. A fresh round of talks between the government and student representatives is scheduled for today. Here is a report.
8: JPSC-JSSC aspirants took out a protest march from Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk in Ranchi yesterday and burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav. The students raised slogans demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into alleged irregularities in recruitment examinations. Meanwhile, the state government has invited the protesting students for talks today at 2 p.m. in Ranchi, with the students allowed to participate along with their legal advisors. The Reform Manch has said that if the government accepts the students' demands, steps could be taken towards ending the agitation, otherwise the protest will continue. The students have already announced a protest outside the Chief Minister's residence on August 20th, but said the final decision would depend on Devendranath Mehto's health and outcome of today's talks. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
6: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will today launch the Electoral Literacy Club ELC 2.0 in Patna. This initiative has been seen as an important step towards giving a fresh impetus to electoral literacy, digital engagement and meaningful participation of citizens in democracy. We have a report.
9: ELC 2.0 is being launched keeping in the view of growing digital connect of the youth. The Election Commission had started the Electoral Literacy Club in the year 2018 with the aim of familiarizing young citizens with the electoral process. Under ELC 2.0, the target has been set to form ELCs in 15 lakh schools, 70,000 colleges and 1420 universities across the country over the next 6 months. All these ELCs will also be linked to the Election Commission of India's network, ECI Net. Meanwhile, in another program, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will interact with around 500 booth-level officers at Nalanda University in Rajgir today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
6: Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogpuram from today, using the existing airport code VTZ. Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogpuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. It has 22 check-in counters, 18 self-baggage drop units, advanced screening systems, modern baggage handling facilities and 7 aero bridges for a seamless passenger experience. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Government says 396 infrastructure projects of different ministries with an estimated cost of about 18.66 lakh crore rupees have been recommended for approval under the PM Gati Shakti initiative till date. The Minister of Commerce and Industry said that among these projects, 256 projects have been sanctioned and out of which 198 projects are under implementation. It added these projects have been evaluated through the Network Planning Group NPG mechanism. PM Gati Shakti National Master Plan PMGS NMP is a whole of government approach to bring together various central ministries and departments and states and UTs to ensure integrated planning and coordinated execution of infrastructure projects. India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for today. An orange alert for very heavy rainfall has been issued for Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Heavy rainfall is also expected over Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Marathwada and parts of Northeast India. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Bihar, Jharkhand, Karnataka and Odisha today. Similar weather conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana and Andaman and Nicobar Islands for the day. Furthermore, the weather agency has forecast one or two spells of very light rainfall during afternoon in Delhi. Odisha braces for the spell of intense rainfall as a low pressure area over the Bay of Bengal is likely to intensify into a depression today, threatening to worsen the flood situation in northern districts. The IMD has issued a red warning for 4 districts and an orange warning to 11 districts with heavy to extremely heavy rainfall likely at several places in North Odisha. With rivers in spate and lakes affected, the state government has intensified relief operations while Chief Minister Mohan Charan Majhi will undertake an aerial survey of flood-hit Bhadrak and Jajpur districts today. We have more from a correspondent.
2: In the flood-hit areas, the situation remains challenging as inundation has affected large parts of several northern Odisha districts. The state government has cancelled the leave of officers in affected districts and deployed 3 IAS officers to coordinate relief and restoration work in Bhadrak, Baleswar and Jajpur. Schools and educational institutions are closed today in Mayurbhanj, Keunjhar, Bhadrak, Jajpur and Baleswar as a precautionary measure. Fishermen have been advised to stay away from the sea till tomorrow. In Jaleshwar and Baleswar district, 2 persons lost their lives and another seriously injured after a wall collapsed due to incessant rain. Authorities are closely monitoring vulnerable areas and river systems as fresh rainfall could further aggravate waterlogging and inundation. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
6: The 12-day-long annual pilgrimage to the ancient Baba Budha Amarnath Temple in Poonch district of Jammu began this morning amid tight security. The yatra will continue until August 28 and will culminate on Raksha Bandhan. Baba Budha Amarnath Temple dedicated to Lord Shiv is located in Rajpura village in Mandi Tehsil of Poonch district. We have more from a correspondent.
10: Lieutenant Governor Manoj Sinha today flagged off the first batch of the yatris from the Bhagavati Nagar Yatri Nivas in Jammu toward the border district of Poonch in the morning under tight security arrangements. District administration and local bodies have finalized arrangements including waterproof tents, community kitchen, langar locations, parking layouts and healthcare station along the pilgrimage route. Langars and reception counters have been set up at vital transit locations like Sundarbani, Nushara and Rajal in Rajouri district. The Poonch district administration has launched a dedicated portal to facilitate advance registration for the pilgrims coming from across the country. This is N. Gulshan Rana for Akashvani News from Jammu.
6: The country's first virtual zoo has been started in Indore, Madhya Pradesh. We have more from a correspondent.
1: The 14D cinema and virtual jungle safari have been developed under the PPP model at a cost of around 4.5 crore rupees. In the virtual jungle safari, people can experience forests and wildlife through technology. The 14D cinema will offer visitors a different movie watching experience. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated these facilities yesterday and also watched a film with school children in the 14D cinema. These new facilities will help children and tourists learn about wildlife and nature through technology. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
6: The BWF Badminton World Championships will begin today at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. We have a report.
11: Indian shuttlers will begin their campaign on the opening day today. In the women's singles, former world champion and ninth seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland, while the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Shetty will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In the men's doubles discipline, the ace Indian duo and fifth seeds Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have already proceeded to the second round after receiving a bye. Meanwhile, the Indian duo of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan will take on the Irish duo of Scott Gilley and Paul Reynolds. In the mixed doubles category, 15th seed pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have also proceeded to the round of 32 after a bye. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
6: In men's cricket, India will resume the first innings at the overnight score of 460-9 on day 3 of the first test match of the series, the Gull International Stadium in Sri Lanka today. Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw of stumps yesterday evening. Devdutt Padikkal hit his maiden test century, scoring 167 runs. KL Rahul scored 82 runs and Dhruv Jurel contributed 51 runs. For Sri Lanka, Prabhat Jayasurya clinched 4 wickets, while Keshara Nuwantha took 3 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
12: Thank you, Abhishek. Amit Shah seeks Congress apology over Vande Mataram Rao, reports The Hindu. West Bengal launches Ayushman Bharat, CM health insurance schemes, says The Statesman. Hindustan Times, in its editorial piece, A Roadmap for Progress, writes that the successes of the PM Sabsadhara focus is critical to resolving the immediate crisis of jobs. The paper elaborates that, like every such address from the ramparts of the Red Fort over the past 8 decades, Prime Minister Narendra Modi's speech to mark the 80th Independence Day combined a short-term actionable roadmap with the long-term path that the country should embark on. And finally, in a world record and Guinness feat, the Asian Age writes that 3 UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
6: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic, West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: श्रोताओ, भारत में सावन सिर्फ एक महीना ही नहीं है, बल्कि आस्था, उल्लास और उत्सवों की शुरुआत है। श्रावण आते ही जैसे प्रकृति भी हरे रंग की चुनरी ओढ़ लेती है और भारतीय जीवन में त्योहारों के रंग घुलने लगते हैं। सावन का महीना आते ही भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व हो जाता है। हर तरफ कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लेकर निकल पड़ते हैं शिव के जलाभिषेक के लिए। कांवड़ यात्राओं और हर हर महादेव बम बम भोले जैसे जय घोषों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
5: श्रोताओ, सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये वो मौसम है जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। बादल आते हैं, धरती भीगती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति में छाई ये हरियाली हमारे मन में भी छा जाती है और उत्सवों की शुरुआत हो जाती है हरियाली तीज से। अभी हाल ही में यह त्यौहार मनाया गया। महिलाओं के लिए ये उत्सव विशेष मायने रखता है। उत्तर भारत में इस त्यौहार को विशेष तौर पर मनाया जाता है। नवविवाहित स्त्रियां सावन के मौसम में अपने मायके आती हैं। हरे वस्त्र, मेहंदी, चूड़ियां, लोकगीत और पेड़ों पर पड़े झूलों का आनंद लेती हैं। सावन की तीज स्त्री मन के उल्लास और प्रकृति सौंदर्य का पर्व बन जाती है। झूले पर बैठी सखियां जब सावन के गीत गाती हैं तो लगता है जैसे पूरा मौसम ही संगीत बन गया हो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब
3: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: श्रोताओं, आज नागपंचमी है। आप सभी को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में केवल ईश्वर की ही आराधना नहीं की जाती, बल्कि पूरी प्रकृति ही, चाहे वो वृक्ष हो या जीव, पूजनीय है। जहां आंवला नवमी जैसे त्योहार वृक्षों का महत्व बताते हैं, वहीं नागपंचमी एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति के उन जीवों के प्रति भी सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश देता है जो हमारे साथ साथ इस प्रकृति का हिस्सा हैं।

श्रोताओं, नागपंचमी के बाद अब आएगा राखी का त्यौहार, फिर जन्माष्टमी और फिर गणेश चतुर्थी, और ऐसे यह सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां मौसम बदलने के साथ साथ उत्सवों का ये सुंदर सिलसिला चलता है। तो सावन की पहली बूंद से शुरू हुई हमारी यात्रा हमें याद दिलाती है कि भारतीय जीवन में उत्सव कभी अकेला नहीं आता। एक त्यौहार दूसरे को बुलाता है, एक गीत दूसरे से जुड़ता है, एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को मजबूत करता है, और देखते ही देखते पूरा देश उत्सव के रंग में रंग जाता है। तो आइए इन त्योहारों को केवल मनाए नहीं, इनके पीछे छिपे प्रेम, भाईचारे, प्रकृति और संस्कृति के संदेश को भी अपने जीवन में उतारें।

श्रोताओं, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के गाए पराया धन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है मराठी कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: तो श्रोते हो, श्रावण सोमवाराच्या आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा, नागपंचमीच्याही खूप खूप शुभेच्छा। आज मराठी कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर प्रीती छडीदार होते आणि आता मी आरजी अपेक्षा खोचे आपला निरोप घेते। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम। सुबह के 9:30 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल हमीद का वायलिन पर बजाया राग मियां की तोड़ी। तबले पर संगत है मनीष खरगांवकर की।

0: समारोह में कलेक्टर। ये आकाशवाणी इंदौर है। डीजे सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी, बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम के सामूहिक गायन ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली भी निकाली गई और फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश के वाचन को एलईडी के माध्यम से देखा और सुना गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत 14 अगस्त को सचिव श्रम विभाग रघुराज राजेंद्रन और कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनबड़े ने बैतूल विकासखंड की ग्राम पंचायत खेडला में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्राहियों के आवास अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। खिडला में ढूंढा तक सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान आवागमन में ग्रामीणों को होने वाली परेशानी पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने 12 अगस्त को आठनेर जनपद के ग्राम बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र से गांव के लोगों को छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बैतूल में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारम्भ शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि देश भर में हर घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिला प्रशासन बैतूल द्वारा फ्रीडम रन हम दौड़ेंगे देश के लिए का आयोजन किया गया। फ्रीडम रन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके ने 13 अगस्त को शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई में 10.68 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत शासकीय आईटीआई में 60 सीटर बालक छात्रावास तथा एकलव्य महिला आईटीआई में 6 ट्रेड के आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रक्तांजलि एक रक्तदान राष्ट्र के नाम अभियान के तहत जिला स्तरीय मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित इस शिविर में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनबड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने स्वयं रक्तदान कर नागरिकों को प्रेरित किया। शिविर में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, छात्र छात्राओं, युवाओं, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में 400 यूनिट रक्तदान हुआ। जिले में खरीफ मौसम में फसल बीमा तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 17 अगस्त यानी आज तक कर दी गई है। कृषि उपसंचालक आर के रजक ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के चलते भारत सरकार ने फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त यानी आज तक की है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जुड़ सके। युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन 13 अगस्त को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित थे। जिला रोजगार अधिकारी श्याम कुमार धुर्वे ने बताया कि रोजगार मेले में 269 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। इस दौरान 10 निजी कंपनियों के द्वारा कुल 216 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती जादौन। श्रोताओं, वैसे तो आप हमारे जो नियमित श्रोता हैं वो हमारे फोन नंबर जानते ही हैं, पर हमारे नए श्रोताओं के लिए बता दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 पर। हमारा एसटीडी कोड है 0731। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ। दीदी
0: नमस्कार। राजेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप हमारे बहुत ज़्यादा नियमित श्रोता हैं और लगभग हर कार्यक्रम में आपका कॉल आता ही है।
1: बिल्कुल, आज नाग पंचमी है दीदी, और नाग पंचमी की मैं सभी श्रोताओं को बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नाग पंचमी पर्व की।
1: पहले क्या था कि ये नाग मतलब पूजा होती थी, और पहले नाग को दूध पिलाओ ऐसे
0: कहा जाता था। जी बिल्कुल।
1: बाकी अब क्या है कि जैसे समय के साथ ये सब खत्म होता,
0: परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। जी
1: तो क्या है कि नाग पंचमी के अवसर पर गीत आप भले ही नाग पंचमी से जुड़ा हुआ सुनवा दीजिए, या फिर
0: आपकी पसंद का सुनवाते हैं। आप क्या सुनना चाह रहे हैं?
1: हाँ, सचिन जी का जन्मदिन भी आज, महान अभिनेता।
0: जी जी।
1: तो उनकी फिल्म है गीत गाता चल, जो कि उनकी पहली फिल्म थी, उसका गीत है मंगल भवन है मंगल हारी।
0: अच्छा अच्छा, चौपाइयाँ जो हैं उस फिल्म में वो आप सुनना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है,
1: धन्यवाद
0: जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हम जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
5: जी, प्यार भरा नमस्कार दीदी।
4: नमस्कार। अच्छा, आपका जो दूसरा रेडियो चल रहा है या उसकी आवाज हम तक पहुंच रही है, तो उसको आप थोड़ा धीमा कर दीजिए, आपसे बात कर लेते हैं, या उससे थोड़ा दूर हो जाइए।
5: हाँ, किया दीदी
4: जी। चलिए, तो आपका परिचय दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
5: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो दीदी।
4: नमस्कार, अमरावती से बोल रहे हैं आप ना?
5: जी जी जी जी, जिला अमरावती है हमारा
4: जी। और आप करते क्या हैं?
5: हम तो खेती किसानी करते हैं दीदी।
4: खेती किसानी करते हैं, तो अभी तो अच्छी बारिश हो रही होगी वहाँ पर।
5: हाँ, बारिश भी अच्छी हो रही है, फसलें भी अच्छी है दीदी।
4: चलिए,
5: खासकर अभी नागपंचमी का त्योहार भी मना रहे हैं
4: जी। आपको शुभकामनाएं।
5: आकाशवाणी इंदौर के सभी टीम को और आपको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामना देते दीदी।
4: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं त्योहार की। और आज क्या खास आप करने वाले हैं? अच्छा, वो आप बाद में बताइएगा, पहले बता दीजिए कौन सा गाना आपको सुनवाए।
5: फिल्म नागिन है, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और ये गीत सबसे पहले, हाँ बोल दीदी, आप कहना चाहते हैं?
4: हाँ, बस ये कि आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे, यही कहना था, आप बताइए।
5: जी जी जी जी, ये तो आकाशवाणी इंदौर पर हम कम से कम महीना बोलो या 2 महीने के बाद फोन लगाते हैं, क्योंकि
4: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
5: हमारे हेलो फार्मेसी एकता ग्रुप के साथियों का भी मौका मिलना चाहिए ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, सभी श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए।
5: हाँ, हमारे लोकेंद्र वर्मा जी और हम बार बार इसीलिए साथियों को प्रेषित करते हैं कि कम से कम 1 महीना 2 महीने के बाद फोन लगाओ।
4: बिल्कुल सही है,
5: नए श्रोता को मौका मिलता है।
4: बहुत अच्छा, जैसे आपसे मेरी पहली बार ही बात हो रही है और खुशी की बात है कि महाराष्ट्र से हमारे एक श्रोता से हम बात कर रहे हैं और आप स्वयं जो है वो ध्यान रखते हैं इस बात का, इसकी बहुत खुशी है।
5: आरती दीदी बात कर रही
4: थी? जी बिल्कुल, आरती बोल रही हूँ।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दीदी, तो बारिश तो हमारे यहाँ भी अच्छी तरह आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते हैं हमारे।
4: मोबाइल ऐप पर सुनते हैं आप?
5: हाँ, डीटीएच पे भी सुनते हैं, मोबाइल ऐप पर ही सुनते हैं, लेकिन अब बिजली नहीं तो हम मोबाइल पर सुन रहे हैं।
4: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको आपकी पसंद का ये गीत हम
5: हेलो हमारा हेलो फार्मेसी एकता ग्रुप के सभी साथियों के लिए डेडिकेटेड है और आप भी सुनिए दीदी।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी को सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।
5: जी जी जी जी जी।

0: हेलो, आई एम हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: नमस्कार भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, थोड़ी से तबीयत हल्की सी सर्दी जुकाम हुआ है दीदी।
0: हाँ, इस समय ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बड़ी तेजी से वायरल फैल रहा है इस समय।
1: हाँ, फैल रहा है दीदी और काफी दिक्कत भी आ रहा है। बुखार भी सभी को रहा है।
0: हाँ, सभी को बुखार आ रहा है,
1: भी हो रहा है, किसी को खांसी भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा है, कभी बारिश हो रही है और नहीं भी हो रही है तो बादल जो है वो छाए हुए हैं, बारिश हो
1: जी,
0: या
1: जी,
0: ना हो।
1: दीदी अभी क्या है, ये मौसम परिवर्तन हुआ ना, जो वाटर लेवल में पानी में फर्क पड़ा है ना दीदी, वो पीने में आता है, उस कारण से सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सही है, तो पानी उबाल कर पीना ऐसे में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि अशुद्धियां निकल जाएं। अच्छा भगवान सिंह जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर और गाने के बोले नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, और हमारे मित्र केसर सिंह राजपूत जी, मांगीलाल चंदेल जी और राम बाबू शर्मा जी को डेडिकेट रहेगा दीदी, अविनाश जी भी सुन रहे हैं आपको।
0: चलिए, तो आपके इन सभी मित्रों को समर्पित करते हैं ये गीत जो आपने पसंद किया है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और सिंदूर फिल्म
1: धन्यवाद
0: का ये
1: दीदी,
0: गीत है। धन्यवाद
1: बहुत
0: कॉल करने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।

0: चलिए हम बात कर रहे हैं अगले श्रोता से। हेलो, आई एम एच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार सूर्य प्रताप जी, आपसे बात करके हमें खुशी हो रही है। आपसे पहले बात मेरी नहीं हुई है तो आज कुछ नए श्रोता मिल रहे हैं।
1: हाँ नहीं, एक बार और बात हो चुकी है।
0: अच्छा, पहले पर काफी समय हो गया मेरे ख्याल से।
1: काफी समय हो गया है जी।
0: काफी समय बाद हमारी बात हो रही है। चलिए, आपने अगर काफी अंतराल के बाद हमें कॉल लगाया है तो बहुत अच्छी बात है ये। आज आप क्या सुनना चाहते हैं सूर्य प्रताप जी?
1: आज मुझे लूडो फिल्म का गाना सुनना है, वो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो।
0: आबाद, बर्बाद, अरिजीत सिंह की आवाज में। अरिजीत सिंह पसंद है आपको?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए, तो आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। और आज जैसा आपको पता है कि नागपंचमी है, तो क्या आपके यहाँ कुछ विशेष इस अवसर पर विशेष तौर पे इसको मनाया जाता है?
1: हाँ बिल्कुल मनाया जाता है। पूजा होती है नाग देवता की, और मतलब जो पकवान बनाए जाते हैं उनका भोग लगाया जाता है।
0: अच्छा, कुछ खास पकवान बनते हैं क्या आज?
1: हाँ बनते हैं ना, जैसे मालपुए हैं।
0: क्या बात और है,
1: पकौड़े वकौड़े सब बनते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर भोग लगा करके आपने खुद को भोग लगा लिया या नहीं?
1: नहीं अभी नहीं।
0: अभी नहीं। चलिए, तो आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप ये सुनिए, और उसके बाद फिर नाग देवता को भी भोग लगाइए और खुद भी उसका आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए।
1: बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले श्रोता से।
1: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: जी जी एमएच हॉटलाइन से बात कर रहे हैं
1: जी। मोहम्मद कॉलोनी खंडवा से।
0: किसी वजह से आपका नाम छूट गया।
1: हेलो
0: जी। हाँ नाम फिर से बता देंगे, सुनाई नहीं दिया था।
1: मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से।
0: नमस्कार यूनुस जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
1: आरती दीदी को, तमाम आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की शुभकामनाएं।
0: आपको भी शुभकामनाएं। और आज आज कौन सा गीत?
1: नाग बाबा भी आपके सामने ही उपस्थित है।
0: अरे वाह, तो मतलब आज नाग पंचमी है और सामने आपको दर्शन दिए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले अपनी जब बात हुई थी
0: जी जी,
1: जब गुरु पूर्णिमा थी, आज नाग पंचमी, देखो ये बात की बात है
0: जी। क्या बात है। और सावन का महीना शुरू होते ही भारत में बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, और आपकी आवाज से लग रहा है कि आप भी बिल्कुल बढ़िया हैं।
1: मैं बढ़िया हूँ, लेकिन घर में सब बच्चे पोता
0: जी
1: ले आ रहे हैं डॉक्टर के यहाँ।
0: ओहो,
1: अभी चल रहा सर्दी खांसी।
0: ये अभी एक श्रोता से हमारी बात हुई थी, उनको भी कहा था कि खास ध्यान रखें, क्योंकि हर घर में अभी कोई ना कोई बीमार जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, आज आप गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: हम तो यही चाहते हैं कि पूरा अपना देश स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
0: बिल्कुल, आप भी स्वस्थ रहे।
1: एकदम बस बस, हम तो ये चाहते, हमारी सोच ही है।
0: अच्छा, आपकी पसंद का गीत बता दीजिए, फिल्म बता दीजिए।
1: मुझे महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत सुनना है मुझे।
0: कौन सा
1: बोले? इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे।
0: क्या बात है, आप तो गुनगुनाते भी अच्छा है।
1: याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई,
0: चलिए आपको
1: बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। ये हमारे गुरु भाई है ना, ये भी बहुत रेडियो सुनते हैं, इनके यहाँ 24 घंटे रेडियो चलता है।
0: चलिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.np.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आप हमसे जुड़े रहिए। एक बार फिर हम नए श्रोताओं के लिए फ़ोन नंबर बता दें, 2710-223-2710-224। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो MH हॉटलाइन।
7: जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नांग पर।
6: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
7: जिला छतरपुर में बसा मनकारी है ग्राम, और थाना है महराजपुर, फूलचंद मेरा नाम, फूलचंद मेरा।

0: सुनहे नर नारी है, मगन भय भारी है।
1: क्या बात है, तो आपने तो पूरी जो है उसकी पूरा एक गीत बना करके रखा है,
0: जी
1: एक
0: आदि जी मैंने
1: निवेदन गीत
0: पूरा
1: बना के रखा है। अब इसमें ये
0: मैंने
1: भी जोड़ दीजिए कि कौन सी फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनना है, दो लाइनें वो भी आ जाएंगी तो आपका पूरा ही गीत तैयार हो जाएगा।
0: जी जी बिल्कुल आरती जी, मैं बता दूं कि मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूं।
1: जी, आपके गीत से हमको ये पूरी जानकारी मिल गई थी कि फूलचंद जी बोल रहे हैं और छतरपुर से बोल रहे हैं।
0: जी जी जी जी
1: हाँ,
0: खजुराहो।
1: तो अब क्या सुनना चाह रहे हैं ये बताइए।
0: देखिए आरती जी, आज नागपंचमी है तो जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी
1: जी
0: को बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की, और आरती जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपको भी शुभकामनाएं।
0: और आज नागपंचमी है और नागपंचमी का गीत ना बजे तो फिर थोड़ा अधूरा सा लगता है।
1: जी बताइए कौन सा गीत
0: बिल्कुल,
1: सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम है दूध का कर्ज और गीत के बोले के

0: ना ये वाला गीत बजाना है आपको।
1: चलिए ठीक है, तो
0: और
1: आपको
0: हाँ जी आरती जी कुछ हमारे मित्र हैं,
1: डेडिकेट
0: करना चाहता हूँ।
1: हाँ बता दीजिए, उनके नाम भी ले लीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो आरती जी आपको डेडिकेट रहेगा,
1: जी शुक्रिया।
0: और हमारे मांगीलाल चंदेल जी हैं दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से हैं, और राजू यादव जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव जी हैं, जितेंद्र पाल मणिराम पाल जी हैं, और कानपुर से हमारी बहन पूनम सिंह जी हैं, और जितनी माताएं बहनें सुन रही हैं इस कार्यक्रम को सभी को डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को समर्पित करते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल, लेकिन आरती जी आपसे वादा है कि आप खजुराहो आइए कभी घूमने के लिए।
1: बिल्कुल, ये तो हमारी भी इच्छा है कि वहां तक पहुंचे, कब पहुंच पाते हैं देखते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत करेंगे आपका, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फुलचंद जी।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: एक बार फिर स्वागत है MH हॉटलाइन में। हम जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो हेलो
5: हेलो, नमस्ते मैम।
4: नमस्ते, अब तो मैं आपकी आवाज़ पहचान गई हूँ और आप महोबा से बोल रहे हैं। हाँ, पापा के साथ आप भी गाना सुन रहे हैं या फिर कॉल के लिए बुलाया पापा ने आपको?
5: कॉल के लिए बुलाया है।
4: अच्छा, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
5: मेहरबान फिल्म का। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते।
4: अच्छा, पीछे से पापा बता रहे हैं कौन सा गाना सुनना है।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी मैम, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: गोगांव, तहसील मनावर, जिला धार से मैं महेंद्र भगोरे।
0: नमस्कार महेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया मैम, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन
1: आपको
0: सा गीत
1: आपको
0: सुनना चाह रहे हैं?
1: आपको आपको और आकाशवाणी टीम को पूरी को नाग पंचमी के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम, फिल्म है सूरज और चंदा,
0: जी
1: और गीत गीत के बोल है पूरब दिशा से पैसी आया।

0: आपकी पसंद का ये गीत जो है आपको हम ज़रूर सुनवा रहे हैं। और अभी हमारे पास चूंकि समय कम बच रहा है, तो अभी यही लग रहा है कि क्या हम दो कॉल्स ले सकते हैं या फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, मुश्किल ही लग रहा है, तो आपसे ही बात कर लेते हैं, आपके गीत से ही आज के कार्यक्रम का हम जो है वो समापन कर लेंगे। तो आप बताइए महेंद्र जी कि आज इस अवसर पर, नागपंचमी पर क्या विशेष होता है आपके यहाँ?
1: मैडम, नाग पंचमी पे नाग देवता की पूजा अर्चना होती है, जगह
0: जी।
1: जगह मंदिरों में भंडारे होते हैं,
0: और
1: और
0: कुछ विशेष आयोजन आपके घर में होता है?
1: हाँ मैडम, घर में यही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
0: पहले
1: और
0: प्रचलन था कि जब भी नागपंचमी होती थी तो घर घर सपेरे आया करते थे, टोकरी में सांप
1: हाँ लाते
0: लेकर
1: हैं,
0: के।
1: आते थे ना।
0: हाँ, और दूध, ये पहले तो बहुत आम था, जैसे ही
1: हाँ
0: नागपंचमी की सुबह होती थी सुबह से ये शुरू हो जाता था सिलसिला, पर अब ये जो
1: अभी
0: है
1: भी
0: कम
1: आते,
0: हो चला है। शहरों में तो
1: हाँ
0: बहुत ही
1: कम
0: कम
1: तो
0: हो गया है, क्योंकि अब वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जब सामने आई हैं कि

0: कि सांप दरअसल दूध पीते ही नहीं
1: नहीं,
0: हैं,
1: जी जी सही
0: वो
1: बात है।
0: इसलिए कि उनको बहुत समय तक भूखा प्यासा रखा जाता है, जिसकी वजह से वो उसको फिर पानी समझ करके पी लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के सामने आने पर इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें अब कम भी होती जा रही हैं, पर फिर भी जो पूजन हम करते हैं इस तरह का कोई अत्याचार उनके साथ ना हो, आज तो हम उन्हें पूजते हैं, पर ये एक बताता है कि किस तरह से प्रकृति के वृक्षों को, जीवों को, सबको हमने शामिल किया है अपनी संस्कृति में और उनकी हम
1: जी,
0: पूजा अर्चना भी करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: मैम,
0: चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं और शायद यही अंतिम गीत हो आज के कार्यक्रम का।
1: जी मैम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो रहा है। इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आरती को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: यह आकाशवाणी।

0: का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए पेश है कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सावन की रिमझिम फुहार और बरसात का मौसम, तो ऐसे में मन क्यों न हो प्रसन्न। और जब आप प्रसन्न होते हैं तो होठों पर मुस्कान तो यकायक आ ही जाती है। इसलिए हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, जब भी करो बात मुस्काया करो, जैसे भी रहो खिलखिलाया करो, जो भी हो दर्द सह जाया करो, ज्यादा हो दर्द तो अपनों से कह जाया करो। जीवन एक नदी है, तैरते जाया करो, ऊंच नीच होगी राह में बढ़ते जाया करो, अपनापन यहाँ महसूस हो तो चले आया करो, बहुत सुंदर है यह संसार, सुंदर और बनाया करो, इसलिए जब भी बात करो मुस्कुराया करो। तो चलिए, प्यारी सी मुस्कुराहट आपके होठों पर भी आ चुकी है और जुड़ते हैं कार्यक्रम में और खुश करते हैं हमारे उन श्रोताओं को जिनके आज हमने फोन कॉल आज के प्रोग्राम में शामिल किए हैं।
3: हेलो, मूवी का नाम है मैडम निगाहें, मूवी का गाना।
2: अच्छा, निगाहें का कौन सा गीत सुनेंगे?
3: ये वाला गाना है मैडम। किसे ढूंढता है पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, ऐसा करके सॉन्ग है।
2: अच्छा अच्छा, था ये गाना सुनने की कोई खास वजह?
3: मैडम ये गाना नाग पंचमी है ना, इसलिए गाना चाहिए था हमें।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद पर किया है वो गीत आपके रेडियो सेट पर। शुक्रिया संतोष जी, नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम आज है फोन करें गीत सुने। नीमत से कौन बात कर रहे हैं, एक बार फिर से अपना नाम
1: गंगा मेहरा
0: बताएं।
1: बात कर रही हूँ नीमच
0: जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आप नेटवर्क में आकर बात कर।
1: जी माँ, वो भी क्या बादल वगैरह हो रहे ना, जैसे नेट नहीं मिल रहा है।
0: अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए, जल्दी से अपनी फरमाइश बता दीजिए, कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना
1: गाने के
0: चाहेंगे।
1: बोल, मूवी का नाम है जॉनी मेरा नाम, और गाने के बोल है बाबुल प्यारे।
0: जी, चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: नमस्कार, सागर मध्य प्रदेश से पंडित शिवनारायण तिवारी बोल रहे हैं
1: जी। सागर से बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। कौन सा गीत आपने सोच कर रखा है?
0: बारिश हो रही बहुत ज्यादा।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बारिश का ही कोई गीत सुनना चाहेंगे या अपनी पसंद बताइए बारिश के किसी गीत की।
0: पसंद है आज की चांदनी फिल्म का।
1: कौन सा गीत?
0: चांदनी आज सावन की फिर वो झड़ी है
1: जी। और
0: जी,
1: खासकर सावन और बारिश है तो सोने पे सुहागा जैसा है ये गीत, है ना
0: जी।
1: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें
0: आपको
1: फोन
0: आपको
1: किया
0: बोल रही
1: जी। मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ। नमस्कार
0: जी, नमस्ते नमस्ते,
1: नमस्कार,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्कार।
0: जी,
1: हरदयाल जाटव, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं हरदयाल जी?
1: सब बढ़िया है जी।
0: क्या चल रहा है अभी? बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है या नहीं है
1: मौसम
0: आपके?
1: बढ़िया है, कल पानी बरस गया झूराझार, अभी तो धूप निकली है। हाँ
0: आह, क्या बात है। तब तो फिर आपने जो है आपके घर की नमी और आसपास के वातावरण में

0: थोड़ी सी खुशबू आ
1: हाँ
0: जाएगी
1: जी,
0: धूप से, है ना
1: हाँ जी,
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप हरदयाल जी?
1: अनाड़ी फिल्म का सुना दीजिए।
0: ठीक है, अनाड़ी फिल्म में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं दीवानी
0: बरसात के मौसम में अपना बेहतर ख्याल रखिए, क्योंकि
1: हाँ
0: धूप,
1: जी,
0: ठंड और हवा से मिलकर जो है स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। धन्यवाद हरदयाल जी, नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम में फोन करें कि सुने। नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते, नीतू बोल रही हूँ,
0: कहाँ से?
1: उज्जैन से।
0: नमस्ते नीतू जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने पहली
1: मैम
0: बार
1: मुझे
0: फोन लगाया नीतू जी?
1: हाँ मैम, मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है
0: अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और कितनी
1: जी।
0: ट्राई के बाद आपका फोन लगा है?
1: जी थैंक यू मैम। आप
0: हम भी अच्छे हैं। कितनी बार आपने कोशिश की कि आज आपका फोन लगा और हमसे बात हुई है?
1: हाँ मैम, करती थी पर डे दो चार बार आज लग गया
0: ठीक है, प्रयास करते हैं तो सफलता भी जरूर मिलती है
1: जी
0: ना,
1: मैम, थैंक
0: चाहे
1: यू।
0: वो किसी भी
1: मुझे
0: क्षेत्र की हो।
1: हाँ मुझे गाना सुना है, मूवी का नाम है अनजाने, और गाने के बोल हैं काले काले बादल जब भी छाएंगे।
0: क्या करती हैं
1: कौन
0: नीतू
1: बोल
0: जी
1: रही है
0: आप?
1: मैम आप?
0: जी, मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी, ओके मैम, अच्छा लगा बात करके। मैम
0: धन्यवाद। क्या करती हैं आप नीतू जी?
1: मैं टीचर हूँ
0: हाँ, क्यों, कौन सा
1: जी,
0: विषय पढ़ाती हैं आप?
1: और हाउसवाइफ भी हूँ टीचर के साथ साथ
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी
1: इसलिए
0: बात है कि आप डबल ड्यूटी
1: जी मैम।
0: करती हैं, है ना?
1: जी मैम
0: और आपका प्रोफेशन भी इतना अच्छा है कि आप देखिए आप कितना बच्चों का भविष्य बनाते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। घर से तो मिलते ही हैं संस्कार, लेकिन
1: जी जी
0: स्कूल
1: मैम
0: जाने के बाद में भी जो शिक्षक उन्हें संस्कारित करते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, है ना
1: जी जी मैम, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात
0: जी। कौन
1: करके।
0: सा विषय पढ़ाती है आपने, ये तो बताया ही नहीं हमें।
1: मैम मैं यूकेजी नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ
0: अच्छा, तो आपके पास
1: जी।
0: तो सभी विषयों की जिम्मेदारी होगी।
1: वैसे मेरा पसंदीदा तो हिंदी है और संस्कृत
0: बढ़िया, चलिए,
1: है
0: तो आप अपनी इसी तरह की नेक
1: जी।
0: गतिविधि में व्यस्त रहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम।
0: जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए, फिर हम आपसे जानेंगे आपकी फरमाइश।
1: जी, मैं ग्राम उलझान से बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार।
0: कैसे हैं आप,
1: बढ़िया हूँ मैम।
0: बताइए आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
1: मैंने फिल्म का नाम है प्यासा सावन,
0: हाँ, इसका कौन सा गीत?
1: गाना मेघा रे मेघा रे।
0: जी,
1: जी
0: अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर जो है हमें ऐसी ही फरमाइश मिल रही है और मज़ा भी आता है मौसम के अनुरूप
1: हाँ
0: जब
1: मैम,
0: हम
1: तो
0: गीत
1: उसके अब
0: सुनते हैं।
1: आज
0: तो
1: जी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते मैम।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं?
1: मैं रुचि जैन बोल रही हूँ रतलाम से। जी
0: कैसी हैं आप?
1: मैम, हम अच्छे हैं। और आप?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आप पढ़ाई करती हैं क्या?
1: जी हाँ, हम 9th क्लास में हैं।
0: जी, तो आपका पसंदीदा विषय कौन सा है रुचि जी?
1: मेरा तो बायोलॉजी।
0: बायोलॉजी है। ठीक है, तो आगे आपने क्या सोच के रखा है बायोलॉजी आपका पसंदीदा?
1: आगे हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे।
0: हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप अपनी जो
1: थैंक यू
0: आपका जो
1: मैम, आप
0: लक्ष्य
1: कौन
0: है।
1: बोल रही हैं?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: नाम है राबता।
0: हाँ, गीत के बोल बताएं।
1: राबता मूवी का सॉन्ग है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ये वाला।
0: अच्छा जी, तो आपको समय मिलता है? आपका स्कूल रहता होगा ना कल, अगर जब ये कार्यक्रम प्रसारित
1: सुन
0: होगा।
1: लेती हूँ कभी कभी, आज तो संडे ना।
0: हाँ, आज संडे है इसलिए फोन लग गया, लेकिन कल आप शायद ना सुन पाए क्योंकि आपका स्कूल रहेगा इस समय। तो
1: कोई बात नहीं, हम बाद में, मतलब ऐसा कुछ पापा से बोल देंगे, वो सुनवा देंगे।
0: अच्छा, तो पापा रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे है ना, और फिर आपको सुनवा
1: हाँ,
0: देंगे। चलिए, कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरी दो सिस्टर है
0: हाँ,
1: और एक भाई है, वो
0: अच्छा, दूसरी सिस्टर क्या करती है?
1: भी छोटे हैं।
0: छोटे हैं। चलिए ठीक है, तो आप सबसे बड़ी हैं, यानी आपके ऊपर दो भाई बहन की जिम्मेदारी है।
1: जी मैम,
0: हाँ, तो रक्षाबंधन के लिए क्या सोचा है आपने अपने भाई के लिए?
1: बस
0: जल्दी से बताएं।
1: रक्षाबंधन आएगा तो हम बस तैयारी चल रही है, अभी से तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा करेंगे।
0: जी, रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं, और आपके लक्ष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और कल इंडिफेंस डे था तो हैप्पी इंडिफेंस डे आपको।
0: नमस्ते।
1: के नमस्ते।

0: हेलो,
1: मैम नमस्ते। फोन
0: नमस्ते।
1: करेंगी सुने?
0: बिल्कुल,
1: ग्राम
0: सुनिए
1: नेगई सिलोड़ी तहसील धीमरखेड़ा जिला कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं,
0: जी। नाम भी तो बताइए
1: परमलाल साहू। मैं
0: जी। परमलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: जी? और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे अगर?
1: बंधन फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए मैम।
0: जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: मैं सीमा बोल रही हूँ, बीना से। हाँ,
0: जी। सीमा जी, स्वागत है हमारा। नमस्ते, हम प्रियंका बात कर रहे हैं, आपकी रेडियो संगीनी आपकी सेवा में हाजिर है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मुझे तो वो चाहिए याराना फिल्म का गाना।
0: कौन सा गाना सुनेंगे?
1: हाँ,
0: याराना का गीत मिल
1: अब तेरे
0: जाएगा?
1: जैसा यार कहाँ।
0: चलिए, याराना फिल्म का ये गीत। नमस्कार।
2: तेरे

श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। आज हमारे बहुत से नए श्रोताओं से आज हमने बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम नए नए श्रोताओं से जुड़े ताकि हमें नई नई फरमाइश मिले और नए नए गाने सुनने का अवसर भी मिले। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर नए रिश्ते ना बने तो कोई मलाल ना करना, पर पुराने टूट न जाए बस इतना ख्याल रखना। आज जिन श्रोताओं से हमारी बातचीत हुई है उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और अगले कार्यक्रम के तक के लिए अनुमति चाहती है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति प्रियंका माहेश्वरी की थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: रायसेन जिले के भोजपुर शिव मंदिर में सावन सोमवार और नाग पंचमी के सहयोग पर भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। दुख की इस कड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। देश की आजादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। मौसम विभाग ने आज सीधी, मऊगंज, डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी और

एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टल क्वीन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म कभी कभी से। स्वर लता मंगेशकर किशोर कुमार के हैं, गीतकार साहिर, संगीतकार खयाम। फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इन्हीं के साथ अगले श्रोता महाराष्ट्र उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस, एकांश। मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन, टुकटुक। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित और ध्वनि गवाड़कर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म मिशन कश्मीर से। गीत लिखा राहत इंदौरी ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटड़ा बहादुर ज़िला मंदसौर मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल, पप्पू लाल और विक्रम डांगी। इन्हीं के साथ अगले श्रोता गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म घर से। गीत में आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें लेवई से आई है। श्रोता हैं गुलाब दास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिगनी से दनीश वर्मा है, भिलाई से मुकेश वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा। अगले श्रोता ग्राम पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

का याग्निक और साथियों के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म छुपा रुस्तम से। गीतकार संगीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से। श्रोता हैं एमएम रजावत, मधु रजावत, राशि, रक्षित राज, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रीत, ऋषभ। अगले श्रोता छत्तीसगढ़ बालोफ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार तामुरिया, डॉली, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, बन वगैरह से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा, बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी सानवी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म एक दीवाना था से। गीत लिखा जावेद अख्तर और ब्लेज ने, संगीतकार है ए आर रहमान। फरमाइश रिंगनी छत्तीसगढ़ से आई है, दिनेश वर्मा करुणा वर्मा श्रोता हैं। अगले श्रोता डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूरा शिमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
9: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
10: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
9: तो सुनते रहिए मालवा किसान
11: आकाशवाणी इंदौर।
10: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
9: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
10: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
9: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
10: अरे काहे का मजा,
9: क्यों, क्या हुआ?
10: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
9: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
10: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
9: ये हुई ना बात।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
3: इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का सातवां भाग।

सन 1857 के शुरुआती महीनों में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की अंगड़ाई साकार हुई। विदेशी दासता के जुए को कांधों से उतार फेंकने के लिए देशवासियों की पहली कोशिश, मातृभूमि की बलवेदी पर पहला अनुष्ठान, जनगण का पहला अभियान, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम।

आमने सामने की लड़ाई में कंपनी की फौज को भारी नुकसान सहना पड़ रहा था, लेकिन वो संभल गई। दक्षिण से बंबई और मद्रास से ताजा दम फौजें इकट्ठा की गईं, नए सेना नायक नियुक्त किए गए और स्वाधीनता संग्राम को कुचलने का नया दौर शुरू हुआ।

0: स्वाधीनता के सेनानियों में आग थी, उमंग थी, जोश था, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह था, लेकिन प्रतिरोध की कोई योजना या रणनीति उनके पास नहीं थी और इसलिए ये प्रतिरोध प्रतिशोध के उन्माद में सिमट कर रह गया।
1: विप्लवी दीवानों के पास कोई सेनानायक नहीं था और न ही कोई तालमेल। वो एक भीड़ की तरह आते थे और विनाश के पन्ने लिखकर इधर उधर छितरा जाते थे।
0: हैवलॉक, आउट्रम, नील आदि अंग्रेज सेनापतियों के नेतृत्व में फिरंगी फौजें पलटवार के लिए चल पड़ी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एक के बाद एक पराभूत होते जा रहे थे।
1: जनरल विल्सन ने सितंबर में दिल्ली पर घेरा डाल दिया। अपने घुड़सवार टुकड़ी के साथ जनरल हडसन महल में घुस गया। बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर और मलिका जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया गया। हडसन ने खुद मुगल शहजादों को मौत के घाट उतार दिया।
0: जनवरी की 27 तारीख और वर्ष 1858, मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।
2: बहादुर शाह जफर को फांसी दिया जाना एक नई उत्तेजना और एक नए बवाल का सबब हो सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें आजीवन सजा देकर रंगून भेज दिया।

0: और मुगल बादशाहत हमेशा के लिए इतिहास से विदा हो गई। सन 1858 के प्रारंभिक महीनों में उत्तर भारत के विप्लवी दस्तों की बड़ी और संयुक्त रूप से की जाने वाली कार्रवाइयां थम गई थीं। विद्रोही तितर बितर होकर छोटे छोटे गिरोहों में बट गए थे और छापामार शैली में हमले करके अंग्रेजों को खूब परेशान कर रहे थे।
1: हिमालय से लेकर बिहार और विंध्य पर्वतमाला तक और ग्वालियर दिल्ली से लेकर गोरखपुर दानापुर तक का समूचा भूभाग इन बिखरे हुए विप्लवियों से भरा हुआ था। वो पराजित अवश्य हुए, लेकिन ये पराजय अनिर्णीत थी। उनमें अभी भी उत्साह था। अंग्रेजों का कब्जा केवल शहरों तक था, अंचलों और जनपदों में विद्रोह अभी भी शेष और तपती गर्मी का मौसम अंग्रेजों के लिए प्रतिकूल।
0: संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र था कालपी, जहां नाना साहब की सेनाएं और रणबांकुरे सेनापति तात्या टोपे की मौजूदगी अंग्रेजों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही थी। बुंदेलखंड और मध्य भारत, नाना साहब, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई से लोहा लेने चल पड़ा था जनरल यूरोज़।

0: अब होनी टक्कर, अब होनी टक्कर।
1: जनरल ह्यूरोज का फरमान आया है भाई साहब।
2: क्या चाहते हैं वो?
1: ह्यूरोज चाहता है कि झांसी समर्पण कर दे। आप अपने सरदारों के साथ बिना हथियार अंग्रेजों की छावनी में।
2: बस करो नाना साहब, ह्यूरोज अपनी कौम का दस्तूर ही निभा रहा है, झांसी की प्रजा इसका जवाब देगी।
3: हम लड़ेंगे और मर मिटेंगे
4: अपनी झांसी के लिए,
5: अपने रानी के लिए,
6: अपने देश के लिए,
7: स्वराज के लिए।
3: यही उत्तर भिजवा दीजिए रानी साहिबा, झांसी का संदेशा जनरल ह्यूरोज के नाम।
2: जनता की ये आवाज साम्राज्यवाद के बहरे कानों में पहुंच गई होगी।

0: अब तुम लोगों की शूरवीरी और हथियारों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। लड़ाई में मोर्चे को संभालना, बैरी की योजना को समझकर उसे विफल करना, हथियार और अनुशासन, लड़ाइयाँ इनसे ही जीती जाती हैं।
1: फाटकों की हिफाजत और सैनिकों की रसद के प्रबंध कर दिए गए हैं महारानी, कोई कोताही नहीं होगी।
2: बैरियों को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा।
0: हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि किले से बाहर निकलकर नहीं लड़ सकते, इसलिए किले की पुख्ता हिफाजत करनी पड़ेगी। झांसी शहर पर भी विनाश के गोले बरसेंगे।
3: भाई साहब, पूरा प्रबंध कर लिया है। दिन रात तोपों की गरजने का, तोपचियों को रसद, खाना पीना, गोला बारूद लगातार पहुंचाया जाता रहेगा। दीवारों बुर्जों के टूटने चटकने पर कारीगर और गारा पत्थर भी फिल वक्त हासिल रहेंगे। रानी साहिबा, किले के भीतर बारूद बनाने का पक्का इंतजाम है।
0: अच्छा है, मगर सावधान रहना, मैं किले के भीतर और बाहर मौजूद रहूंगी। नगर की गली गली में घूमूंगी और जनता को सचेत रखूंगी। हर एक फाटक की देखभाल करूंगी मैं।
3: जी रानी साहिबा।
4: हर हर महादेव।

0: वेल जनरल हीरोज, यहां से देखो मोर्चा साफ साफ दिखाई देता है।
1: Yes, Stuart, I can see which I have never seen before. हाँ स्टुअर्ट, मैं देख रहा हूँ पहले जो कभी नहीं देखा और शायद फिर कभी देखूंगा भी नहीं। हम औरतों से लड़ रहे हैं, मर्दाने लिबास में औरतें ही औरतें, लेकिन हम उनको पहचान सकते हैं। वो टोपे चला रही हैं, टोपे में बारूद भर रही हैं, खाना पीना ला रही हैं और ले जा रही हैं। देखो स्टुअर्ट, घायलों को संभाल रही हैं, किले की दीवारों की मरम्मत कर रही हैं। वो क्या नहीं कर रही? Oh my God, strange। हिंदुस्तान सिर्फ उड़ते हुए कालीनों और जादुई चिरागों का ही मुल्क नहीं है। स्टुअर्ट देखो, ये हिंदुस्तान ये किसी भी हालत में अपनी आजादी हमें नहीं सौंपेगा। It is a total wrap। Topchi, listen Topchi, अपनी टोप 30 डिग्री ईस्ट में घुमाओ एंड फायर।

0: झांसी में भयंकर लड़ाई हुई, लाल लाल लहू और तपता हुआ लाल लाल लोहा। कालपी से मदद नहीं आ पाई। जागीरों और मनसबदारियों के लालच में देशद्रोहियों ने घात किया और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। झांसी छूट गई। उसकी नियति अब थी कत्लेआम, लूटपाट, कारत, सर्वनाश। अपनी आजादी को खोने की पहली कीमत। तीन हजार लाशों से पटी पड़ी थी झांसी और लाशों पर अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी फौजें रानी के पीछे थी। रानी मुकाबला करती हुई कालपी पहुंची।
1: कालपी में तात्या टोपे थे, नाना साहब के भाई राव साहब थे, बांदा के नवाब और दूसरे लोग, और अब उनमें शामिल हो गई झांसी की रानी।
2: अंग्रेजों का चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। बुंदेलखंड की रक्त रंजित धरती के चप्पे चप्पे पर लोहा और लहू की जुझारू जंग। तमाम गढ़ियां और गढ़ हाथ से निकलते जा रहे थे। देशभक्त शहीद हो रहे थे और विश्वासघाती माला माल। स्वतंत्रता का संग्राम अभी जारी रखना था।
0: कालपी के परामर्श में निश्चित किया गया कि गतिविधियों के केंद्र के रूप में किसी दुर्ग को पहले अधिकार में लिया जाए। इसके लिए ग्वालियर निकटतम था। सदियों पुराना, मजबूत और अभेद्य ग्वालियर का किला। क्रांतिकारियों ने उसे चुना और उस तरफ कूच की।
1: ग्वालियर की सेना ने विप्लवियों का साथ दिया और 2 जून को ग्वालियर के लासानी दुर्ग पर क्रांति का परचम लहराने लगा।

ग्वालियर पर राव साहब का अधिकार हो गया। 3 जून को राव साहब ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें पेशवाई के लिए उनका राज तिलक किया गया। आमोद प्रमोद, उत्सव राग रंग,

0: थी। विजयोत्सव की धमक से नितांत अलग उन्हें दिखाई दे रही थी आकाश पर कौंधती हुई बिजलियां और उनकी विनाशक चमक।
1: तांतिया साहब, राव साहब और उनके दरबारियों की भांग का नशा उतरा कि नहीं?
2: और बिगाड़ा होता जा रहा है भाई साहब। घुंघरुओं की रुंझुन में उन्हें कुछ और सुनाई नहीं देता।
1: जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
2: समाचार अच्छे नहीं है भाई साहब। युरोज काल्पी से चल पड़ा है और उसकी फौज ग्वालियर को कई तरफ से घेरने ही वाली है। आगरा वाले रास्ते पर अंग्रेजों का जमावड़ा है। पूरब में भी रास्ता रोक लिया गया है।
1: राव साहब नहीं सोचते तो आप ही कुछ करिए तांतिया साहब। ये व्यूह रचना कहीं चक्रव्यूह न बन जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और आप ही इसके लिए समर्थ हैं।
2: लेकिन यहाँ के सिपाही हमारा साथ नहीं देंगे भाई साहब।
1: लेकिन संग्राम तो जारी रखना ही होगा तांत्या साहब। अशनी संकेत बहुत उजागर हैं। पता नहीं स्वराज के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा।
2: वैसे ही जैसी स्वतंत्रता की सुदीर्घ परंपरा रही है, त्याग तपस्या बलिदान से अपने रक्त और अपनी जान से नींव भरने की आवश्यकता है, तभी इस नींव पर भव्य प्रासाद खड़ा हो सकेगा।
1: तांतिया साहब, होनी को कौन टाल सकता है? यदि ग्वालियर में हम हारते हैं तो दक्षिण का रास्ता बचा कर निकलने के लिए सुरक्षित रखना होगा। शायद वहीं से संग्राम को जारी रखा जा सके।
2: ध्यान रखा जाएगा भाई साहब। पहले तो ग्वालियर में ही पूरी ताकत से जूझना होगा।
1: जूही, सुंदर और मुंदर, मेरी प्यारी बहनों, मुझे दो वचन दो। एक तो मेरी देह फिरंगियों के हाथ नहीं लगे और दूसरा ये कि मेरे पुत्र दामोदर राव को तुम लोग सुरक्षित दक्षिण तक पहुंचा दोगे। वचन दो बहनों, ये रोने धोने का समय नहीं है। हंसते हंसते अपने आप को मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर कर देने की घड़ी है। बावरी बहनों, ऐसे धन्य और पुण्य क्षण सभी के भाग में नहीं होते। मौत की आंखों में आंखें डालकर कहो, हम तेरा आलिंगन करने के लिए तैयार हैं।
3: जी जी रानी साहब, हम तैयार हैं।

0: 18 जून 1858 का लाल सवेरा। जनरल स्मिथ की फौज ने राव साहब के मोर्चों पर निर्णायक हमला किया और मोर्चे बिखरने लगे। ग्वालियर के सिपाही अंग्रेजों के साथ जा मिले। धरती पर होड़ लेता हुआ शहीदों का बहता हुआ लहू। अब आमने सामने की लड़ाई थी। मारो काटो के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तलवार और लहू, आजादी की ललक प्राणों का मोल मांग रही थी।
1: रानी युद्ध के खुले मैदान में कूद पड़ी।
2: देखो उसको मारो। देखना संभल के।
1: उनके साथ थे उनके विश्वसनीय साथी रघुनाथ सिंह, मुंदर, गुल मोहम्मद और बालक दामोदर राव की रक्षा में जुटा रामचंद्र राव देशमुख।
0: अंग्रेज सैनिक लगातार रानी का पीछा कर रहे थे। अंग्रेज रानी के आसपास तक पहुंच गए।

0: बाबा, बाबा भाई साहब ने कहा था झुंकी देह को विदेशी छू भी ना पाए।
1: वही होगा गुल मोहम्मद, वही होगा। इस बाबा गंगादास की कुटी किस दिन काम आएगी? जल्दी करो, रानी को कुटी में पधराओ और कुटिया को चिता बनाकर हम इस पार्थिव देह को अग्नि स्नान करा दें।
0: जी बाबा, ताकि ताकि चिता की राख भी पापी फिरंगी छू ना सके। हाँ। इसका इंतजाम भी करना होगा बाबा।
1: हाँ।
0: यहाँ पर एक बाजार बनानी होगी, तुरंत फरत बनानी होगी बाबा, तुरंत फरत।
2: हाँ कुल मोहब्बत, ये समाधि रानी साहिबा की यादगार होगी।

0: विचार किसी दिवंगत स्वप्न या अस्तमान संकल्प की नहीं, बल्कि परंपरा का एक उज्ज्वल प्रस्थान बिंदु, जहां सुनाई देगा समय देवता का गुरु गंभीर स्तवन घोष। रास्ता यहीं ठहर नहीं जाता, यहां इति नहीं है। मनुष्य की अजय आत्मा और मुक्ति की अदम्य वांछा का प्रारंभ है ये इतिहास की अनवरतता, एक भव्य और प्रशस्त पथ।
1: पीढ़ियां इस राह पर चलेंगी, स्वनाम धन्य शहीदों का साया उनका मंगल आख्यान होगा, लघु से महत तक की अनंत यात्रा। यही है हमारी प्रतिबद्धता, हमारी विरासत और हमारा पाथेय। अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के एक साथ आने से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वर्ष में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 12 बजे खोले गए। बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लखीसराय में भगदड़ के कारण लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। देश की आज़ादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। मौसम विभाग ने आज सीधी, मऊगंज और डिंडौरी जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और FIH हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अच्छी नींद के महत्व की। अच्छी नींद हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद समय पर हो तो उसके अनेक लाभ हैं, जैसे शरीर को आराम और ऊर्जा मिलती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और याददाश्त भी बेहतर होती है, ध्यान और सीखने की क्षमता बढ़ती है और तनाव और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। अच्छी नींद स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ पर्याप्त नींद लेने से शरीर और मन बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए नींद को केवल आराम नहीं बल्कि स्वास्थ्य की आवश्यक ज़रूरत समझना चाहिए। और श्रोताओं, अच्छा संगीत भी तनाव को कम करने में सहायक होता है, तो सुनते हैं एक मधुर गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है भेंट वार्ता का। आइए अब आपको सुनवाते हैं नवजात शिशु की देखभाल विषय पर डॉक्टर अंशु नारंग से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नवजात शिशुओं की देखभाल के संदर्भ में। और जब बात नवजात शिशुओं की है तो निश्चित रूप से हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आप हैं डॉक्टर अंशु नारंग, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी नवजात शिशु की बात आती है
2: जी,
1: तो नवजात शिशु के आने पर प्रसन्नता और खुशी और उसके स्वागत की बात तो एक बहुत अलग पक्ष हो जाता है, जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है
2: जी।
1: लेकिन जब उसकी सुरक्षा की या उसके देखभाल की बात आती है तो कई बार, विशेषकर जो नए माता पिता होते हैं, जो एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं, उनके सामने कई सारे प्रश्न हो जाते हैं
2: जी।
1: तो हमें वो कौन सी बेसिक चीजें या कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए नवजात शिशुओं की देखभाल के संदर्भ में, ताकि वो स्वस्थ रह सकें और उनका विकास एक नियमित क्रम में हो पाए
2: जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और कहा, जैसे कि एकल परिवार होता है, जैसे पहले होते थे संयुक्त परिवार, तो कोई ना कोई घर का बुजुर्ग होता था जो एक मार्गदर्शन दे पाता था
1: जी।
2: लेकिन उसकी जगह एक बात ये भी अच्छी हुई है कि आजकल ज्यादा प्रसव जो है वो हॉस्पिटल में होते हैं, और कोशिश रहती है सरकार की भी ये कि दूर दराज के क्षेत्रों की भी जो माएँ हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो आशा बहनें हैं वो सही समय पर प्रसव के लिए अस्पताल में ले आती हैं, तो उन्हें उचित देखभाल डॉक्टरी और सिस्टर्स जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनके साथ में मिल जाता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं, जो जिनका पहला शिशु हुआ है उनको बहुत सारी जानकारी नहीं रहती, और दूसरा ये भी हुआ है कि कई बार जानकारी जो रहती है जो आप सोशल मीडिया से या जो आप दूसरे जगहों से लेते हैं वो गलत जानकारी होती है
1: जी।
2: तो उसका भी निदान डॉक्टर्स कर पाते हैं। तो उसमें देखभाल में सबसे पहले जो तीन चीज़ों का ख्याल नवजात शिशु के लिए रखना चाहिए, एक है उसका आहार, दूसरा है उसका तापमान यानी टेम्परेचर मेंटेन होना, और तीसरा बीमारी से या इन्फेक्शन से उसका बचाव
1: जी। निश्चित रूप से आहार तो वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पक्ष होता है
2: जी,
1: जिसकी लगातार जरूरत पड़ती है
2: जी।
1: और नवजात शिशु के लिए शायद ये जरूरत बहुत छोटे छोटे अंतराल के बाद होती
2: जी,
1: है
2: जी।
1: तो इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह से ये दिया जाना चाहिए? और नवजात शिशु का आहार मतलब माँ के दूध की
2: जी,
1: बात है
2: बिल्कुल,
1: तो वो जो भ्रांतियां हैं और जो वास्तविक तथ्यात्मक रूप में होना चाहिए
2: जी,
1: वो हम आपसे जानना चाहें
2: जी। शिशु का जैसा आपने कहा कि सर्वोत्तम जो उसका आहार है वो है उसकी माँ का दूध, और माँ का दूध जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर शुरू किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, और उसे कहा भी जाता है कि वो गोल्डन पीरियड है
1: जी।
2: तो गोल्डन पीरियड में उस बीच में अगर एक घंटे के अंदर अंदर, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे घंटे के अंदर, और अगर ऑपरेशन भी हुआ है तो एक घंटे के अंदर शिशु को माँ के दूध पे लगाना चाहिए, स्तन पे लगाना चाहिए, जिसको माँ का दूध उसको मिल सके, क्योंकि शुरू में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और अगर उसकी रिफ्लेक्सेस यानी बच्चा बहुत सचेत होता है शुरू के 2-3 घंटे में, और उस समय अगर वो सक करे तो माँ भी तनाव मुक्त होती है, और शिशु को भी जो शुरू का दूध मिलता है वो उसकी ज़रूरत 5-6 घंटे तक पूरी करता है। उसके बाद शुरू होता है कि बच्चे का आहार खुद से लेना, तो ये कहा जाता है कि शुरू के 72 घंटे तो माँ को थोड़ा सा, और माँ अगर मान लो ऑपरेटेड भी है तो जो साथ में उनके केयर टेकर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो हर 2-3 घंटे में बच्चे को माँ के दूध पे लगाएं, और कम से कम उसको सही

0: पोजीशन में लेटा के 15-20 मिनट कम से कम एक स्तन पे लगा के रखें, और फिर जैसे जैसे बच्चा 3-4 दिन का हो जाता है तो उसका शेड्यूल अपने आप बनने लगता है, जिसे हम लोग डिमांड फीडिंग बोलते हैं। बच्चा खुद इशारा देता है रो के कि वो भूखा है, और तब माँ अपने स्तन पे लगाए तो वो अच्छे से अपना आहार लेता है। ये भी यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बहुत कम दिन के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम प्री टर्म बेबीज बोलते हैं, जो 37 वीक्स से पहले डिलीवर हो गए होते हैं, या जिनका वजन कम होता है 2.5 किलो से कम, और भी छोटे अगर हुए तो 2 किलो से कम जो बच्चे होते हैं, वो कभी कभी ये इशारा नहीं दे पाते, तो उनमें हमें ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि आप रेगुलर बिल्कुल 2 से 3 घंटे के बाद में उन्हें उठा के और माँ के स्तन पे लगाइए, और थोड़ी देर उसको रखिए। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में आपने हटा लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पोजीशन देने में कई बार टाइम लगता है, तो उस चीज को संभलते हुए समझते हुए कम से कम 15-20 मिनट तक माँ के दूध पे लगाना चाहिए।
1: जी, कई बार डॉक्टर साहब कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब वास्तव में माँ का दूध नहीं आता है,
0: जी,
1: तो उस स्थिति में क्या करें और क्या करना चाहिए?
0: दूध ना आना, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये बात, ये जो संशय है, ये माँ के मन में आया कैसे, क्योंकि जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल फेलियर, प्राकृतिक रूप से दूध आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज जो शरीर में बदलाव आते हैं प्रसव के बाद में, जो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, उससे अपने आप ये प्रोसेस शुरू होती है, ये कुदरती है, इसे रोक नहीं सकते। डिलीवरी हुई है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन तो आएगा ही आएगा। अब उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? बच्चा जब माँ के दूध पे लगेगा, स्तनपान करेगा, तो वो हार्मोन और एक्टिवेट होता है और क्रियाशील होता है, और उसको दूध मिलने लगता है। लेकिन कभी कभी जब बच्चा रोता है तो माँ सोचती है कि हर बार वो भूख के कारण रोया, लेकिन उसके पास एक ही इशारा है, उसकी कोई भी जरूरत हो तो वो सिर्फ रो के उस तरफ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करेगा, जिसमें मान लो उसने कुछ गीला किया है, यूरिन पास किया है, मोशन पास किया है, या कोई उसे चीज गड़ रही है, चुभ रही है, या उसने कुछ करवट लेना चाहता है, या उल्टी आ रही है, उसका तापमान ठीक नहीं है, ज्यादा गर्म या ठंडा लग रहा है, तो भी वो इसी तरह से इशारा देगा। तो हर इशारा भूख का इशारा नहीं होता, वो धीरे धीरे माँ समझने लगती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि दूध नहीं मिल पाए किसी शिशु को, तो अनफॉर्चुनेटली अगर माँ नहीं है किसी वजह से, तो फिर वहां ये समस्या आती है कि कैसे दिया जाए, या अगर किसी माँ को वही अगर कैंसर से वो पीड़ित हो और उनकी दवाई चल रही हो, थेरेपी चल रही हो, तो ऐसे में फिर माँ का दूध मना किया जाता है। तो उसमें भी एक ऑप्शन ये रहता है कि उसी वक्त अगर घर में कोई और धात्री माता, जिसे हम लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, वो अगर है तो उनकी सहायता ली जा सकती है। या आजकल तो फिर एक नई चीज जो आई है और काफी दिनों से ये उसका प्रमोशन भी है, ह्यूमन मिल्क बैंकिंग।
1: जी,
0: तो कई सरकारी हॉस्पिटल्स में अब ये सुविधा है कि माँ का दूध, अन्य माओं से लिया हुआ दूध प्रोसेस करके रखा जाता है, और इन बच्चों को उससे लाभान्वित किया जा सकता है। और फिर भी अगर ऐसी समस्या है कि नहीं है, तो उसमें खुद से कोई अपने मन से पाउडर का दूध शुरू करें, या जानवर का दूध जैसे गाय भैंस का लोग शुरू कर देते हैं, वो करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें और उनके डायरेक्शन में, उनके बताए हुए निर्देशों पे करें, अपने हिसाब से ला के कोई भी मार्केट में मिलने वाले फॉर्मूला मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो देना ठीक नहीं रहता।
1: बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ महिलाएं ध्यान देंगी, उनके घर परिवार के लोग ध्यान देंगे, ताकि जो वो चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे और बेहतर विकास हो, वो हो सके। डॉक्टर साहब, आपने देखभाल के संदर्भ में तापमान की बात की।
0: जी बिल्कुल,
1: तो तापमान से क्या तात्पर्य है और किस तरह से मेंटेन किया जाए?
0: छोटे बच्चे का जो तापमान है, वो अगर दो है उसमें, एक तो बच्चे का खुद का तापमान और आसपास की एम्बियंस जो है, तो खुद का तापमान याद करने के लिए एक छोटी सी चीज है कि आप उसके पाँव को छू के देखिए। अगर पाँव गर्म और गुलाबी है, जो कि तापमान छाती पे हाथ रखने से आता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। उसको बहुत ज्यादा न लपटें और बहुत ही ज्यादा खुला भी ना छोड़ें, और खासतौर से नहलाते समय या कपड़े चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा बहुत गर्म ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। रूम को उतना ही गर्म लगे जिसमें थोड़ा सा एंटर करने पे आपको लगे कि हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। डायरेक्ट ब्लोअर के सामने या हीटर के सामने रखना ठीक नहीं है। और मौसम के अनुकूल उसका टोपा, मोजे, मिटन्स, इन सब का यूज करें, जिससे कि बच्चा पर्याप्त। और एक चीज और, अगर वो माँ से चिपका हुआ रहे, जैसे हम कंगारू कहते हैं, वो अगर माँ से चिपका हुआ रहे, माँ का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिले, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरल वार्मर का काम करता है। तो कंगारू केयर बोलते हैं, माँ का स्किन और बच्चे की स्किन आपस में रहे तो तापमान वैसे ही मेंटेन होता है।
1: जी, और इन्फेक्शन वाली चीज़ भी एक रहती है कि संक्रमण बच्चों में होता है या उससे कैसे बचा जाए किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो।
0: जी, इसमें बस दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अपन ने पहले बात की जैसे कि आहार से संबंधित, अगर उसको सही आहार मिले, माँ के दूध के अलावा किसी भी और तरह का दूध, पानी, जायफल, घुट्टी या शहद ना दी जाए तो एक इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है जो बच्चे को ज़्यादा हैंडल कर रहा है तो वो बच्चे में ये इन्फेक्शन दे सकता है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रखें। और अगर माँ को भी मान लो सर्दी खांसी या इस तरह की कोई चीज़ है तो मास्क लगाकर या दुपट्टा या साड़ी से नाक मुंह को कवर करके फीड करा सकती है। और ज़्यादा लोग हैंडल ना करें, बहुत लोग एक गोदी से दूसरी गोदी में जब बच्चा जाता है तो वो साथ में इन्फेक्शन की संभावना रहती है। और तीसरा जो होता है वो स्किन के इन्फेक्शंस, स्किन को भी जैसे है कि तरह तरह के साबुन तेल इनका इस्तेमाल किया या जो हमारी कुछ कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जैसे आटे की लोई लगा दी या फिर नाक कान में तेल डाल दिया तो नाभि पे तेल लगा दिया, इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर ये सब ना करें, बच्चे को बिल्कुल क्लीन रखें, माँ के दूध पे रखें और ज़्यादा लोग हैंडल ना करें तो ये छोटी छोटी सावधानियों से ही बच्चा स्वस्थ रह सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जब तक अस्पताल में है
0: जी
1: तब तक तो केयर और मार्गदर्शन दोनों ही मिलते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जब वो डिस्चार्ज होके घर आता है
0: जी
1: तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें अपनी केयर ज्यादा बेहतर तरीके से
0: जी
1: खुद करनी है
0: जी।
1: तो उस समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना
0: जी
1: चाहिए?
0: उनमें छोटी छोटी बातें हैं कुछ कि अगर मान लो, वैसे कहा जाता है कि अगर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और घर में भेज दिया गया है तो भी सब कुछ ठीक होते हुए भी एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास में जरूर जाना चाहिए। लेकिन वार्निंग साइंस मतलब जिसमें सावधान रह के वो लक्षण पहचानना है, उनमें जो है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोए, दूध पीने के बाद में भी बहुत रोता रहे या इतना सुस्त रहे कि दूध पीने के लिए 3-4-5 घंटे में उठे ही ना हो, ये हो गया, या फिर अगर उसका पेट फूला हुआ दिखे या उल्टियां कर रहा हो, बहुत ज़्यादा नीला पड़े, खासतौर से हाथ और पांव जो नीले होते हैं वो तो तापमान अगर ठीक रहे तो नहीं होता, लेकिन होंठ अगर नीले रहने लगे, दूध पीते पीते एकदम से चोक करे या एकदम से पीला दिखने लगे, जॉन्डिस की जांच हालांकि अस्पताल में करके भेजा जाता है पर घर जाके यकाएक बच्चा ज़्यादा पीला दिख रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर बच्चे का जो लगे कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अलग हो रहा है, तो उसको ये सोच के ये ठीक हो जाएगा ना करे, तुरंत डॉक्टर के पास जाके, ये वार्निंग साइंस है जिससे वो पहचान सकती है कि डॉक्टर के पास जाके और तुरंत बच्चे का चेकअप कराए।
1: यानी किसी भी तरह की जो असहजता है
0: जी बिल्कुल,
1: वो यदि आपको दिखाई दे रही है तो उसे शंका मान के छोड़े नहीं, एक बार उसको रेक्टिफाई जरूर कराएं, डॉक्टर से संपर्क करके एक बार उसको देखा जरूर।
0: जी बिल्कुल।
1: टीकाकरण यूं तो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोग इस बारे में जानते हैं, फिर भी चलते चलते अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी टीकाकरण है जो महत्वपूर्ण
0: जी है। एक तो टीकाकरण ये कि जो बच्चे ने माँ का दूध शुरू में पिया उसको भी एक तरह का टीका ही माना जाता है, जन्म पे BCG, हेपेटाइटिस और पोलियो, ये तीनों टीके लगते हैं और बाकी तो फिर शेड्यूल के हिसाब से जो सरकारी टीकाकरण का अपना प्रोग्राम है वो नेशनल शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड दे दिया जाता है और उसके हिसाब से टीकाकरण कराते रहे।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने देखभाल के संदर्भ में बताई, हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों का ध्यान रख के निश्चित रूप से नवजात शिशु को हम बेहतर विकास की ओर मोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी की ओर, जिसमें आज का हमारा विषय है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाई गई डिजिटल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर, 3D मॉडल या निर्देशों को वास्तविक दुनिया के स्वरूप में डिस्प्ले किया जाता है। बात करते हैं अब इसके उपयोग की। मेडिकल स्टूडेंट्स 3D मॉडल के माध्यम से ह्यूमन एनाटॉमी को आसानी से समझ सकते हैं। सर्जरी में इस तकनीक के उपयोग से काफ़ी मदद मिलती है। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने में भी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पेशलिस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्निक से मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एक वरदान की तरह है। श्रोताओं, आइए आनंद लेते हैं एक और मधुर गीत का।

कार्यक्रम में अब समय हो गया है हेल्थ टिप्स का। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, हो सके तो रात में भोजन हल्का व समय पर करें। कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा चाय कॉफी के सेवन से परहेज करें। फूड डायरी बनाएं और लिखें किन किन चीजों से परेशानी बढ़ती है, और हो सके तो अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। रोज थोड़ा टहलें, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव को कम रखने की कोशिश करें। तो श्रोताओं, इसी आशा के साथ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी।
1: अदम्य शक्ति।
2: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
10: इस समय आप हैं हमारे साथ।
11: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दया भार्गव और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले आप देवी गीत सुनेंगे, इसके बाद बधाई गीत, और फिर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हरदौल गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दया भार्गव और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं अविनाश त्रिपाठी।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा किसान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।

सी अर्जुन के संगीत निर्देशन में अब आइए सुनते हैं उषा मंगेशकर का गाया हुआ गीत। शब्द रचना प्रदीप की है और फिल्म का नाम है रक्षाबंधन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के समापन पर आज कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा इस मौके पर निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं तिरंगा लहराकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट पहनकर अपने वाहनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा वाहन यात्रा की शुरुआत कमिश्नर कार्यालय से हुई, जिसके बाद ये काफिला कंट्रोल रूम तिराहा, जेल रोड, एमपी नगर थाना तिराहा और शौर्य स्मारक, रोशनपुरा चौराहा, बाणगंगा तथा पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए रेत घाट की ओर रवाना हुआ। इसके बाद यात्रा ने वीआईपी रोड, करबला और लालघाटी चौराहा पहुंचकर शहर के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। लालघाटी से यात्रा वापस वीआईपी रोड की ओर मुड़ी और रेत घाट, कमला पार्क और लोक भवन होते हुए वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही हैं। आगरमालवा जिले के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव के रूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी आज शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आरती के बाद तीसरे सोमवार उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के संयोग पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट कल रात 12 बजे खोले गए, जो 24 घंटे तक खुले रहेंगे। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की नागराज की फणों के नीचे विराजमान दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। अभी तक कई लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं सावन सोमवार पर महाकाल मंदिर के पट तड़के 2:30 बजे खोले गए और भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। आज नई दिल्ली में सार्वजनिक बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही हैं। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में छिंदवाड़ा जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 3rd दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के 2rd दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यों था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
5: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
6: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रधान दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, बारिश का मौसम, जैसे प्रकृति ने धरती के माथे पर फिर से हरी चुनर उड़ा दी हो, सूखी डालियों पर उम्मीदें उतर आई हैं, मिट्टी की सूंधी सी खुशबू में जैसे कोई नया सपना जन्म ले रहा है, और आसमान से बरसती हर बूंद मन के भीतर कुछ भिगो रही है। दोस्तों, ये मौसम सिर्फ धरती के खिलने का नहीं है, मन के खिलने का भी मौसम है। ये जहां बादलों की ओट से झांकती धूप हमें याद दिलाती है कि हर उदासी के बाद उजाला जरूर आता है, हर सूखेपन के बाद हरियाली जरूर लौटती है, और हर ठहराव के बाद जीवन फिर से अपनी गति पकड़ता है। तो आइए सुहाने से इस मौसम में इन पलों में आपकी फरमाइश को शामिल करें, इन पलों को आपकी फरमाइशों से सजाएं और आपकी पसंद पर कुछ नगमे गुनगुनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश है। ये नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। और इसी गीत को पसंद करते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य।

पूर्णिमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और अब आइए बढ़ते हैं आपकी फरमाइश के साथ आगे। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, संगीत शंकर जयकिशन का है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और फिल्म का नाम है एक दिल सौ अफसाने। अनुरोध आप सबका है सादुल शहर राजस्थान से, ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। और ये चिट्ठी आई है कमर कॉलोनी बड़वाह से, लिखने वाले श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये चिट्ठी आई हुई है जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर से। लिखने वाले श्रोता हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल, पप्पू लाल डांगी और विक्रम डांगी। और इसी गीत को पसंद करते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म का गीत। आवाज आशा भोसले की है। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशक हैं रवि।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी खत लिख भेजा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, रजिया, जुनैद, अलीना, आयत और मुआज। और ये चिट्ठी आई हुई है दिल्ली शहर मोरी गेट से। लिखने वाले श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अनुपमा फिल्म का नाम है, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल कैफी आजमी के और धुन हेमंत कुमार की। अनुरोध आप सबका है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता अर्जुन गम्हाणकर टुक टुक, आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर और ध्वनि गम्हाणकर परी।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म आरती से, आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और धुन रोशन की। पसंद आप सबकी है। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से रेवा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ से ही दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडुंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हो रहा है। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भव्य तिरंगा वाहन यात्रा इस मौके पर निकाली गई। संत गुरु रविदास जी के समरसता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल यानी 18 अगस्त को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में आज PV सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना स्पेन के पॉला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के शहडोल, जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल आप सुनेंगे 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

सुर्खियों में। ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे ध्यानेश खान का सरोद वादन राग मांझ खमाज। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का निर्धारित क्रम लोक रंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं मार्गेशा
1: और मैं श्रद्धा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है सोमवार, यानी कि वीक का पहला दिन, और ये दिन ना अपने साथ नई ऊर्जा, नई एनर्जी, एक नया एहसास तो लाता ही है, लेकिन साथ ही लाता है बहुत सारा तनाव, बहुत सारा स्ट्रेस। और ये तनाव हमें इसलिए होता है क्योंकि हम छुट्टी के बाद खुद को फिर से काम करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। वो जो वीकेंड वाइब्स होती है ना, वो हमारे मन से निकल ही नहीं पाती, या यूं कहें कि हमारा मन हमें कहीं ना कहीं काम करने के लिए रेजिस्ट करता है।
1: और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले से प्लानिंग न करके रखना। जब हम हमारे मन को आने वाली चुनौतियों के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो ऐसी समस्या आना बहुत ही आम बात बन जाती है। इसीलिए नया वीक शुरू होने के पहले ही अगर इसकी प्लानिंग कर ली जाए तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं।
0: सही कहा, अगर हम पहले से ही ये देख लें कि हमें हर दिन कौन सा काम पूरा करना है या कौन सा टारगेट पूरा करना है, किस चीज़

0: सबसे ज्यादा ध्यान देना है और अगर वीकली टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें तो ये हमें मंडे स्ट्रेस से बचा के रखेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो वीकेंड है उसे खराब कर दे, पूरे वीकेंड यही सोचते रहे कि ये लो फिर से मंडे आ जाएगा और काम पे जाना पड़ेगा, ये टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट पूरा करना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि पहले से ही प्लानिंग करके रखने से आपका वीकेंड जो है वो और भी ज्यादा इंजॉयबल बन जाएगा। तो आप भी जल्द से जल्द ये अपना प्लान बना ही लीजिए कि हर वीकेंड मंडे के जो वीक आने वाला है उसकी प्लानिंग पहले से ही करके रख लें।
1: और दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज तो वैसे भी सोमवार ही था, आज बैठकर आप अपने बचे हुए दिनों की प्लानिंग कर लीजिए और इस वीक का टारगेट भी सेट कर लीजिए ताकि आप ये वीक प्रोडक्टिव तरीके से बिता पाएं।
0: अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं और इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
0: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ कर रखेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में, क्योंकि आज सोमवार है और आज बारी होती है कुछ बातें कुछ गीत की। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: दोस्तों, अब बारी है आज के हमारे खास सेगमेंट कुछ बातें कुछ गीत की, जहां बातें भी होंगी, यादें भी होंगी और गीतों की मिठास भी होगी।
9: और आज की हमारी बातें किसी एक इंसान, एक शहर या एक कहानी के बारे में नहीं है दोस्तों। आज की बातें हैं उन लाखों कहानियों के बारे में जो चुपचाप हमारी अलमारी में बैठी रहती है।
8: बिल्कुल सही कहा तुमने मार्गिशा। और मजेदार बात यह है कि किताबें कभी हमसे पूछती नहीं है कि तुम्हारा मूड कैसा है, बस खुलती है और फिर हमारा मूड बदल देती है।
9: किताबों की यही तो खूबसूरती है दोस्तों। एक किताब बारिश के दिन की चाय जैसी हो सकती है, दूसरी गर्मियों की छुट्टियों जैसी, कोई पुरानी किताब स्कूल की याद दिला सकती है और कोई नई किताब हमें ऐसी दुनिया में ले जा सकती है जहां हम पहले कभी गए ही ना हो।
8: और शायद इसीलिए किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, किताबें जी जाती हैं। कभी किसी कहानी का कैरेक्टर हमें अपना दोस्त लगने लगता है, कभी किसी लेखक की एक लाइन हमारे दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि सालों बाद भी याद रहती है।
9: सही कहा। और कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम किताब पढ़ रहे होते हैं लेकिन असल में किताब हमें पढ़ रही होती है।
8: लेकिन मार्गिशा एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी बचपन में किताबें खोलते ही ऐसा लगता था कि इसमें कोई सीक्रेट दुनिया छुपी हुई है?
9: हाँ, कौन सी मेमोरीज याद दिला दी तुमने श्रद्धा। सच बताऊं तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, खासकर वो छोटी छोटी इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक्स, राजा रानी, जंगल, परी, बोलते हुए जानवर, और हमें लगता था कि किताब के पन्ने पलटते ही सच में कोई नया दरवाजा खुल रहा है।
8: बिल्कुल सही कहा। और स्कूल की लाइब्रेरी याद है, किताबों की स्मेल, वुडन शेल्स, पुराने पेजेस, और फिर सबसे बड़ा सवाल कि आज कौन सी किताब घर लेकर जाएं।
9: और कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए लाइब्रेरी जाते थे कि टीचर उन्हें क्लासरूम में कुछ देर डिस्टर्ब ना करें।
8: लेकिन फिर वही बच्चे एक दिन कोई ऐसी किताब उठा लेते थे जो उन्हें सच में पसंद आ जाती थी। किताबों की ना खासियत ही यही है, वो हमें फोर्स नहीं करती, बस पॉसिबिलिटीज देती है। आप चाहे तो प्रेम की कहानी पढ़िए, मिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पोएट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए, हर किताब आपके सामने दुनिया को देखने का एक नया तरीका रख देती है।
9: और अगर जॉनर्स की बात करें तो किताबों की दुनिया इतनी बड़ी है कि शायद एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। अगर आपको रोमांस पसंद है ना दोस्तों, तो आप निकोलस पार्क्स की द नोटबुक जैसी कहानियां हैं।
8: और अगर फैंटेसी पसंद है तो JK रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज ने तो पूरी पीढ़ी को हॉगवर्ट्स का सपना दिखाया है। और मिस्ट्री थ्रिलर वाले के लिए अगाथा क्रिस्टी की मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, और एंड देन देयर वर नन, ये किताब है, ये किताब ना बहुत अच्छी है, तो ये किताबें पढ़िए आप। और हाँ, एक बार कहानी शुरू कर दी तो दिमाग बस यही सोचता रहता है इनको पढ़ते वक्त कि आखिर हुआ क्या, क्या होगा आगे।
9: और अगर दोस्तों आपको एडवेंचर पसंद है तो आप जूल्स वर्न की अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और 20,000 लीग्स अंडर द सीज जैसी किताबें इमेजिनेशन को ना लिटरली यात्रा पर भेज देती हैं दोस्तों।
8: और अब अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास पूरा का पूरा खजाना है, आर के नारायण की मालगुड़ी डेज। इसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना पड़े ना तो मैं क्या कहूँ, एक काल्पनिक शहर लेकिन उसके लोग इतने असली कि पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे हम उन्हीं की गलियों में घूम रहे हो, उनके साथ रह रहे हो।
9: सही कहा। इसके साथ मुझे याद आती है कुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। इतिहास के एक बहुत कठिन दौर को इंसानी कहानियों के जरिए दिखाती है ये किताब।
8: और अमीश की द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ने माइथोलॉजी और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को इस तरह से जोड़ा कि बहुत से यंग रीडर्स के लिए ना माइथोलॉजी अचानक से एक्साइटिंग हो गई।
9: और फिर आती है मेरी फेवरेट अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय, रस्किन बॉन्ड की छोटी छोटी सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली वो कहानियाँ।
8: और पोएट्री की दुनिया तो एकदम ही अलग होती है दोस्तों। कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़िए, कभी महादेवी वर्मा को, कभी रामधारी सिंह दिनकर को। शब्द वही है लेकिन हर कवि उन्हें अपनी अलग तरीके से कहता है, अपने अलग तरीके से बयां करता है और अपने तरीके से जीता है।
9: शायद इसी वजह से ना दोस्तों किताबें हमें बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि किताब सिर्फ दुनिया जैसी ही वैसी नहीं दिखाती, वो दुनिया में सुंदर क्या क्या हो सकता है ये भी दिखाती है।
8: बिल्कुल, एक ऑर्डिनरी सा पेड़ किसी कहानी में आकर बचपन की याद बन जाता है। बारिश सिर्फ बारिश नहीं रहती, वो किसी अधूरी मुलाकात की याद बन जाती है। चाय सिर्फ चाय नहीं रहती, वो दो लोगों के बीच हुई लंबी सी बातचीत बन जाती है। और एक खाली सड़क किसी कहानी में पूरी जिंदगी की यात्रा हो सकती है।
9: किताबें शायद हमें यही सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होती, कभी एक पुराना बुकमार्क खूबसूरत होता है, कभी किसी किताब के बीच रखा हुआ सूखा फूल भी बड़ा ही खूबसूरत होता है, कभी किसी दोस्त की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नाम, और कभी वो पेज जिसे हमने बार बार पढ़ा हो।
8: और तुम्हें पता है एक बात मैंने कहीं सुनी थी, किसी ने कहा है कि किताब पढ़ने के बाद ना हम वही इंसान नहीं रहते जो किताब शुरू करने से पहले थे।
9: सही कहा है जिसने भी कहा है। तो अगर आपके आसपास कोई किताब पड़ी है जिसे आप महीनों से पढ़ने का सोच रहे हैं तो आज ही उसे उठाइए दोस्तों, पहला पेज खोलिए, हो सकता है आपको कोई कहानी मिले और हो सकता है आपको खुद का कोई हिस्सा भी मिल जाए।
8: क्योंकि किताबों में दुनिया भी मिलती है और कभी कभी हम खुद भी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें।

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम युववाणी में, और अभी अभी हमने बात की किताबों की, उसके बाद हमने लेखकों की भी बात की, उनकी रचनाओं की बात की, और अब बात आकर रुक गई है उस चीज पर जिसके बिना किताब कुछ भी नहीं, और वो है शब्द।
2: दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि ये जो शब्द हैं वो कितने अजीब होते हैं? बस कुछ लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, कुछ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और कभी कभी वही सेंटेंस दिल में छुपी हुई कोई बहुत ही गहरी बात कितनी आसानी से कह देते हैं।
1: बिल्कुल, कभी हमें किसी की बहुत याद आती है लेकिन हम कहे ही नहीं पाते कि कितनी याद आ रही है, और फिर कोई लेखक लिख देता है, तुम्हारी याद भी बारिश जैसी है, आती है तो सब भिगो जाती है, और हम कहते हैं हाँ यही तो कहना था।
2: कभी हमें किसी की आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती है ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है ये कह देने से ना वो फील नहीं आती, वो अच्छे से हम फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर लिटरेचर हमें इसकी एक इमेज देती है, झील सी नीली आंखें, सागर सी गहरी आंखें, और अचानक सामने सिर्फ आंखें नहीं रहती दोस्तों, एक पूरा दृश्य बन जाता है।
1: बिल्कुल, या फिर किसी के होठों की बात हो तो राइटर सिर्फ ये नहीं कहता कि सुंदर होठ हैं, वो कहता है कि कोमल सी कोमल की जो पंखुड़ी होती है उसने कोमल होठ है। और देखिए एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका बदलते ही उसकी पूरी तस्वीर बदल जाती है,
2: और यही तो मैजिक है। राइटर हमें सिर्फ बताते नहीं है कि कोई चीज़ कैसी है, वो हमें उस चीज़ को महसूस भी करवा सकते हैं।
1: और लव स्टोरीज उनमें तो वर्ड्स का जादू ऐसे चलाते हैं कि मानो कोई फेरी टेल चल रही हो। किसी की आवाज़ को मीठी कह देना एक बात है, लेकिन अगर कोई लिख ले कि उसकी आवाज़ शाम की पहली बारिश जैसी थी, तो अब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, महसूस हो रही है। किसी की मुस्कान को सिर्फ सुंदर कहने के बजाय उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सुबह की धूप अचानक खिड़की से कमरे में आ गई हो। अब बताइए इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है?
2: और शायद यही कारण है कि हमें पोएट्री और रोमांटिक लिटरेचर इतना पसंद आता है, क्योंकि वहाँ फीलिंग्स को सिर्फ एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वहाँ उन्हें पेंट किया जाता है। जी हाँ, शब्दों से वहाँ पर एक अलग ही दृश्य तैयार किया जाता है।
1: किसी की चाल को हवा जैसा बताया जाता है, बालों को बादलों जैसा, आंखों को झील या सागर जैसा, चेहरे को चांद जैसा, होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा।
2: लेकिन असली खूबसूरती सिर्फ कंपैरिजन में नहीं है दोस्तों, असली खूबसूरती है कि राइटर उस कंपैरिजन के पीछे एक इमोशन रख देते हैं, यानी कि अच्छा राइटर आपकी इमेजिनेशन के साथ पार्टनरशिप करता है, वो पूरा पिक्चर नहीं बनाता, कुछ हिस्से आपको सोचने के लिए छोड़ देता है।
1: और शायद इसी वजह से एक ही किताब दो लोग पढ़ते हैं लेकिन दोनों को दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। किसी को उसमें रोमांस दिखाई देता है, किसी को लोनलीनेस, किसी को चाइल्डहुड, और किसी को अपनी कोई पुरानी याद।

0: हम बात कर रहे थे कुछ बातें कुछ गीत की, और अब मुझे याद आती हैं यादें। उफ, यादों की बात चली है तो किताबों और नॉस्टैल्जिया का ना एक बड़ा ही कमाल का कनेक्शन है। कभी कोई पुरानी किताब हाथ लगती है तो अचानक याद आता है कि ये किताब मैंने पहली बार आखिर कब पढ़ी थी, किस कमरे में पढ़ी थी, किसके साथ पढ़ी थी, ये किताब मुझे किसने दी थी या मैंने खुद खरीदी थी, उस दिन बारिश हो रही थी या गर्मी थी, किस पेज पर कौन सा बुकमार्क लगाया था।
1: और कभी उस किताब के अंदर से कोई पुरानी चीज निकल जाती है, जैसे कोई मूवी का टिकट हो, कोई फोटोग्राफ हो, कोई छोटा सा पेपर हो जिसमें कुछ खास लिखा हो, या फिर बस किसी का लिखा हुआ नाम किसी एक रैंडम पन्ने पर, और फिर किताब कहानी से निकलकर एक मेमोरी बॉक्स बन जाती है, एक यादों का पिटारा बन जाती है।
0: हाँ, किताबें शायद इसलिए भी और खास है क्योंकि सोशल मीडिया की तरह वो हमारी अटेंशन के पीछे भागती नहीं है, वो बस चुपचाप इंतजार करती है। आप बिजी हैं, कोई बात नहीं, एक महीने बाद आ जाइएगा, एक साल बाद आ जाइएगा, किताब वही मिलेंगी।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी ना हम वही किताब दोबारा पढ़ते हैं और हमें उसमें बिल्कुल नई बात मिलती है, क्योंकि किताब नहीं बदलती लेकिन पढ़ने वाले बदल जाते हैं।
0: ये बात किताबों के लिए नहीं, शायद जिंदगी के लिए भी बिल्कुल सही रहेगी, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक ही लाइन 18 की उम्र में रोमांटिक लग सकती है और वही लाइन 25 की उम्र में पेनफुल। एक कहानी बचपन में एडवेंचर लग सकती है और वही कहानी बड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी लगती है। यानी किताब के पेजेस वही रहते हैं लेकिन रीडर की दुनिया बदल जाती है।
0: और यही वर्ड्स की असली ताकत है। शब्द छोटे हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक माफ करना रिश्ता बचा सकता है। एक मुझे तुम पर भरोसा है, अगर आपको कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है, किसी को हिम्मत दे सकता है। एक मैं हूं ना किसी का जो डर है वो कम कर सकता है। और एक मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूरी जिंदगी को मेमोरी बना सकता है।
1: इसीलिए शायद राइटर्स को वर्ड्स के साथ ना बहुत प्यार होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही शब्द सही जगह पर किसी के दिल तक सीधे पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी किताब है ना जिसकी कोई लाइन आपके दिल के बहुत करीब है, तो आज उसे एक बार फिर से खोलिए, उसी पेज पर जाइए और हो सकता है कि आज वही लाइन आपको कुछ और कहती सुनाई दे।
0: और अगर बहुत समय से आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो आज एक किताब उठा ही लीजिए। कोई बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं, बस 10 पेजेस या हो सके तो 20 पेजेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर पता ही नहीं चलेगा कि कब रात हो गई और आप कह रहे हैं कि बस यार एक चैप्टर और।
1: और वो एक चैप्टर और वही तो है किताबों की सबसे प्यारी बीमारी।

0: देखा आपने, आज हमने किताबों के बारे में कितनी सारी बात की और देखा कि कैसे शब्द, सेंटेंस ये हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं और कितनी छोटी छोटी सी जो बातें हैं उसको बड़े ही आसान शब्दों में बयां कर देते हैं। और इससे ही मुझे आते हैं याद संगीत, यानी कि सॉन्ग्स। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो तो संगीत एक भावनात्मक सहारा बन सकता है। ये हमारे मूड को बेहतर बनाने, भावनात्मक तनाव को कम करने और जुड़ाव का एहसास दिलाने में मदद कर सकता है। और इसी कारण से कई सारी रिसर्च में भी ये पाया गया है कि संगीत सुनने का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: संगीत हमें ये भी याद दिलाता है कि हम जो महसूस करते हैं ना, वो अक्सर दूसरों द्वारा भी साझा किया जाता है, भले ही वो जीवन के अलग अलग अनुभवों और क्षणों में हो।
0: भावनात्मक अभिव्यक्ति और जुड़ाव को बढ़ावा देने की ये क्षमता ही वो कारण है कि संगीत को अब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक सहायक उपकरण के रूप में भी देखा जा रहा है।
1: संगीत हमारे भावों और मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कई लोग संगीत को ऐसे साधन के रूप में वर्णित करते हैं जो तनावपूर्ण स्थितियों में उनका मूड बेहतर कर सकता है।
0: संगीत और अवसाद पर किए गए शोध से ये अनुभव बहुत ही प्रतिबिंबित दिखाई दे रहे हैं। ये जब संगीत का उपयोग चिकित्सा या अन्य मानसिक स्वास्थ्य सहायता में भी देखा जा रहा है, यानी कि देखा जाए तो कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स और उसके साथ अगर थोड़ा सा म्यूजिक ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे मूड को सिर्फ लाइट नहीं बनाते या उसे बेहतर नहीं करते, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक बहुत गहरा असर डालते हैं, जिसके कारण हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रेस है वो कम हो जाता है।
1: और तनाव या चिंता की स्थिति में जब संगीत का इस्तेमाल किया जाता है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं, स्पेशली काम वाला म्यूजिक जो होता है वो सुनते हैं, तो हमारे शरीर को ना एक्सट्रीम स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद मिलती है। और इससे सांस लेने की जो स्पीड है, हमारी ब्रीदिंग की स्पीड है, वो स्लो होती है और मांसपेशियों में तनाव भी कम होता है।
0: सही कहा। और मुझे लगता है कि आज हमने किताबों की इतनी सारी बात की तो इससे मुझे याद आया कि किताबों और संगीत का एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। अगर आप किताब पढ़ते हुए संगीत सुनते हैं ना, तो मैं आपको ये की बात कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवन में हैं। तो दोस्तों, अब समय ने इशारा कर दिया है कि अब समय हो गया हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन आज जो हमने किताबों की बात की उसे भूलिए मत। आज ही जाके एक किताब उठाइए, उसमें अपने आप को ढूंढिए और इस आदत को अपने जिंदगी में ले ही आइए। अब इसी के साथ मुझे एक और चीज याद है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब समय आ गया है उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का। पहला प्रश्न था कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है, और इसका सही उत्तर है 8।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, और इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। उम्मीद है दोस्तों आपका आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा,
0: और मैं मार्गशा, लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म सुल्तान का ये गीत आप सुन रहे थे नेहा वसीम की आवाज़ में, शब्द रचना इरशाद कामिल की, संगीत विशाल शेखर का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आप सुन रहे थे फिल्म बॉडीगार्ड में राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल को शब्दरचना शब्बीर अहमद और शब्बीर अहमद की संगीत है मिस्टर शमी का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

शान और कैलाश खेर को आप सुन रहे थे फिल्म फना में, शब्द रचना जतिन ललित की, माफ कीजिए संगीत जतिन ललित का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब हम आपको सुना रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सब नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीभाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सोमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।
5: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
6: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
4: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं। अद्भुत शांति।
5: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
7: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
8: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
7: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूँ? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
9: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
4: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
6: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
10: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
4: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
10: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
4: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
10: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
4: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
10: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
4: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा,

0: चल रहा है।
1: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना। अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
1: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई। चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
4: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
4: जी जी, अभी लाई।
1: लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो। चलो चलो, गटक जाओ। शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
1: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
0: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो। चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी, ये नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
0: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा। उफ।
5: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो

0: गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
1: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
3: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
1: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
3: बेटा।
2: जी।
4: सुमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
0: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
7: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम। ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
10: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
9: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
10: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
9: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी, ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
7: जी, मुझे मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
6: पिछले साल भी तुमने यही बोला था, सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
7: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम क्या खाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
6: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
8: जी सर,
6: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
8: जी सर।
6: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
8: जी सर।
6: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
8: जी सर।
7: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
6: चलो हटो,
7: साहब साहब
6: आओ,
7: साहब साहब
6: आओ। ऐसे नहीं मानेगा,
7: साहब मत करो साहब।
6: सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
8: जी सर।
9: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
10: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
9: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया।
11: बाजार में नहीं बेच
9: रहा। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
10: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
12: भाई कान्हू।
7: जी भैया।
12: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
7: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
12: क्या हुआ?
7: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
12: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
7: हाँ भैया।
12: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठकी बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
7: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
12: तो फिर
7: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
12: हाँ ठीक कहा तुमने।
7: हाँ
12: ऐसा ही करेंगे।
7: जी भैया।
10: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
9: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
10: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और

0: शांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
1: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कहनू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
2: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन
3: जब्त कर दिया।
4: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
5: सही बोले, सही कहे।
4: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
6: हाँ सही कहा।
4: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
5: तो भैया सही बात
6: कह रहा है।
4: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
6: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
4: लेकिन भाइयों भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
7: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
4: अब करो या मर जाओ।
7: अब करो या मर जाओ।
4: अबुआ राज अबुआ किसुम।
7: अबुआ राज अबुआ किसुम।
4: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।

0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कानू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं चंदन दास।

आप सुन रहे थे इसरार अंसारी का कलाम चंदन दास की आवाज़ में, संगीत चंदन दास और जयदेव कुमार का। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार दर्शन हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: है प्रादेशिक समाचार दर्शन।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की।

0: भोपाल में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर भर में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी राज्य स्तरीय समारोह के अलावा सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
1: भोपाल में आजादी की वर्षगांठ का जश्न उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शहर की विधानसभा, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी थानों और शासकीय निजी विद्यालय, महाविद्यालय, दफ्तरों, सार्वजनिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक दलों के कार्यालय आदि में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। भोपाल के लाल परेड मैदान में राष्ट्रीय पर्व का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति के उत्साह से गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली। समारोह में पुलिस बैंड सहित 22 टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। परेड का नेतृत्व एसडीओपी सिहोरा जिला जबलपुर आदित्य सिंघारिया ने किया, जबकि नगर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली हेमंत कुमार निमाड़े ने सहायक परेड कमांडर की भूमिका निभाई। मार्च पास्ट में महाराष्ट्र पुलिस बल ने भी हिस्सा लिया। इस खास मौके पर पदक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा से जुड़े कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदकों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाल परेड मैदान से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर सेनानियों और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सपूतों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज देश स्वतंत्रता के इस मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की परेड में वंदे मातरम के गायन का शामिल होना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। जनगणमन और वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं गौरवशाली विरासत के प्रतीक हैं। दोनों का एक साथ गायन हमारी समृद्ध राष्ट्रीय विरासत के पुनर्स्मरण सम्मान का प्रेरणादायी अवसर है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
2: युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष, इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके साथ महत्वपूर्ण पिलर्स है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है।
1: सरकार अगले 2.5 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और बड़े निवेश पर विशेष फोकस करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में हर वर्ष 1,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्तरीय समारोह के समापन के बाद लोकभवन में राष्ट्रीय पर्व पर स्वागत समारोह हुआ, जिसके बाद पर्व की संध्या पर रविंद्र भवन में आजादी का महापर्व कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के जज्बों से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: वहीं आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक सप्ताह तक संपूर्ण जिले में अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकालकर राष्ट्र प्रेम की अलग जगाई गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: धार जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार एवं बदनौर में निकाली गई भव्य और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा में धार महू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर भी धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा आम जनों के साथ सम्मिलित हुई और हाथों में तिरंगा थामकर प्रमुख मार्गों पर मार्च किया। भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्तों द्वारा लहराते राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के गीतों ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से तिरंगामय बना दिया। वहीं संपूर्ण क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
4: स्वतंत्र दिवस की 15 अगस्त की मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को, देश प्रदेश वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहती हूँ। साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। हम एक संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं ताकि हमारा देश समृद्ध और हरा भरा रहे। हमको तिरंगा की शान है, हमारी हर घर तिरंगा लगाए, वो दुकान हो कहीं भी हो, पर हमको तिरंगा लगाना चाहिए। वो सभी देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद।
3: वहीं स्वतंत्रता दिवस पर धार जिले में जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। संयुक्त परेड में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, महिला बल, विद्यालय एवं महाविद्यालय के एनसीसी एवं स्काउट के छात्रों सहित विभिन्न विभागों के दलों ने उत्साहपूर्वक भाग ले आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कलेक्टर श्री मीणा द्वारा मीसा मंदी, लोकतंत्र सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का भी सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: प्रकृति जब मुस्कुराती है तो वो अपने आंगन में जीवन के अनगिनत रंग और मधुर ध्वनियां

0: प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा रेड एबडावट और स्क्रली ब्रिस्टेड मुनिया के झुंड इस वन की हरियाली में नया संगीत घोल रहे हैं। इन पक्षियों की सक्रिय प्रजनन गतिविधियां इस जंगल के सुरक्षित और समृद्ध होने का जीवंत प्रमाण है। सबसे सुखद तस्वीर उस समय उभर कर आई जब नगर वन में हाल ही में विकसित किए गए नए तालाब का जल क्षेत्र जलीय पक्षियों के लिए एक शानदार प्राकृतिक आवास बन चुका है। तालाब में स्पॉटेड विल्ड डक, लिटिल ग्रीब और कार्मोरेंट जैसे पक्षियों का डेरा डालना इस बात का सकारात्मक संकेत है कि जल संरक्षण के प्रयास अब जमीन पर जीवन बनकर लहला रहे हैं। वन विभाग के यह अथक प्रयास अब रंग ला रहा है। रेंज ऑफिसर नीरज बिसेन के अनुसार लैंटाना उन्मूलन और सघन वृक्षारोपण से इस क्षेत्र की जैव विविधता में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं छिंदवाड़ा के उप वन मंडलाधिकारी अनादि बुधालिया हर्ष व्यक्त करते हुए बताते हैं कि पुआमा नगर वन में जलीय पक्षियों की बढ़ती गतिविधियां हमारे हैबिटेट डेवलपमेंट का शानदार परिणाम है। विभाग का लक्ष्य इस वन को केवल एक जंगल नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भविष्य में होने वाले नियमित पक्षी सर्वेक्षण यहाँ के वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत करेंगे। पुआमा का यह हरा भरा परिक्षेत्र हमें सिखाता है कि यदि हम प्रकृति की ओर संरक्षण का एक कदम बढ़ाएं, तो वह जीवन के सैकड़ों उपहार हमारी झोली में डाल देती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
1: विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, समय पर पहचान और जन जागरूकता को लेकर विशेष अभियान आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत बैतूल, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, भीमपुर, दामजीपुरा, चिचोली एवं आमला में सिकल सेल जांच एवं जागरूकता शिविर लगाए गए। शिविरों में लोगों की सिकल सेल जांच के साथ बीमारी के लक्षण, उपचार, नियमित फॉलोअप और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। युवाओं को विशेष रूप से विवाह से पहले वर वधु दोनों की सिकल सेल जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। जिला नोडल अधिकारी सिकल सेल कार्यक्रम डॉक्टर अंकिता सीते ने 7 जागरूक नागरिकों को सिकल मित्र के रूप में जोड़ा। सिकल मित्र अपने अपने क्षेत्र में सिकल सेल से संबंधित सही जानकारी को स्वास्थ्य संस्थाओं से आगे समुदाय और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सीते ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज का जागरूक व्यक्ति अपने गांव और समुदाय में सही जानकारी पहुंचाता है, तभी यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी जांच आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। समय पर सिकल सेल की पहचान होने से मरीज को आवश्यक उपचार और नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अभियान के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि शादी से पहले सिकल सेल की जांच कराएं, सही जानकारी अपनाएं, झाड़फूंक से बचें और समय पर शासकीय अस्पताल में निशुल्क जांच एवं उपचार कराएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से डॉक्टर मयंक भार्गव।
1: मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत भिंड जिले में 30 एमपी बटालियन, एनसीसी और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से सीएटीसी कैंप में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक साधना चौधरी, 30 एमपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलवंत सिंह, मैं भारत आइकॉन राहुल राजपूत, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मीना धोरे, माय भारत और कैंप में चंबल संभाग ग्वालियर के एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा उपस्थित कैडेट को मिशन वात्सल्य के तहत बाल अधिकार किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। मिशन सहकारी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जेंडर विविधीकरण और महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। साधना चौधरी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर की गतिविधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि कोई भी पीड़ित महिला अथवा पोक्सो विक्टिम पुलिस अथवा स्वयं वन स्टॉप सेंटर्स में उपस्थित होकर संरक्षण प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर में अल्पकालीन संरक्षण प्रदान किया जाता है, जहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विधि परामर्श की संपूर्ण व्यवस्था रहती है और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का

0: पात्रता अनुसार प्रयास किया जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले और कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम ग्राम लक्ष्मी। रात्रि 8 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सुर्खियों में, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। 8:30 हम आपको सुनवाएंगे भगवान महाकाल की तीसरी शाही सवारी की रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्रगीत और 9:30 पब्लिक स्पीक हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होगा मन भवन। 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए अभिषेक व्यास का गिटार वादन राग है यमन। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम, और अब डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र।

कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर सुनिए खेती की बातें। विषय होगा खेती के मूल पर फेसिंग कर सब्जियों की खेती से आए। वाचक स्वर अनुराधा शर्मा का। 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

7:20 पर सुनी सुनहरे पल। 8:30 पर विविधा कार्यक्रम में सुनिए नृत्याज्ञा और लेखिका से चर्चा। सुबह 9 बजे लोक संगीत में कलाकार हैं बालकृष्ण धनकर और साथी। सुगम संगीत में 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रद्धा जगताप के गाय गीत। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत में सुनिए अमिताभ दत्ता का सितार वादन, राग है नट भैरव। सुबह 10 बजे होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपको लेकर चलेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम में। फोन इन कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बहू जी, मम्मी जी,
5: इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
6: तो लेन देन
5: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
6: ओ
5: जैसे UPI से।
6: अच्छा
5: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
6: वो क्या है मम्मी जी?
5: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
6: आम भी ना मम्मी जी।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कल रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन दर्शन और समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। राजधानी भोपाल में भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता की पहचान भी है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भोपाल कमिश्नर ने राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का संदेश देते हुए हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित किया।
1: ये पुलिस विभाग की तरफ से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह जो तिरंगा यात्राएं निकाले जा रही है, एक ये अंग है। हेलमेट सभी को पहनना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसका सबको पालन करना चाहिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट एवं क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्य योजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। ये सम्मान वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, दक्षता, कार्यकुशलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान के बारा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने वीवीजी राम जी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से प्रस्तावित विकास कार्यों की घोषणा भी की। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,89,000 मकान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, ये हमारा संकल्प है।
3: हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। आज भले 2,89,000 घर दिए लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। राजस्थान के बहनों और भाइयों, हम लगातार तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री, वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष और आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक तथा सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों और धार्मिक स्थलों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर महादेव स्वरूप में श्रृंगार किया गया। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की तीसरी सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकाली जा रही है। नागपंचमी के मौके पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के प्रसिद्ध नागद्वारी मेले में नागपंचमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बड़वानी जिले के नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आगरमालवा के प्रसिद्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवालय बैजनाथ महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का यह दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में आज जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। छतरपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के लिए 20 अगस्त से खंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यूपीएससी की सीएपीएफ 2025 परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए के लिए चयनित झाबुआ के राजवीर सिंह पवार को कलेक्टर और एसपी ने सम्मानित किया। शहडोल में नकली घी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष जांच अभियान के तहत एक दर्जन से अधिक दुकानों से देसी घी के सैंपल लिए गए। जबलपुर में नागपंचमी पर सपेरों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई की। तुलसी शोध संस्थान नयागांव चित्रकूट के सभागार में संस्कृति विभाग के द्वारा कल से 2 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर कलेक्टर द्वारा जिले में ईट राइट एक्टिविटी के अंतर्गत 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं को हाइजीन रेटिंग के संबंध में प्रमाण पत्र आज वितरित किए गए और मंदसौर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश के लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अगले 24 घंटों के दौरान रायसेन और मंडला सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
6: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, आइए सुनते हैं ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सगली बहन ना के और अपना सगला दादा भाई ना के तमारी बहन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों देखो जमानों की तरोज बदली जावे पर जो बूढ़ा अपना मनकना जो बात कही गया है वह बिल्कुल सही है। अने बूढ़ा मनक के तब ही आया था कि औरत घर की लक्ष्मी रहे, अने जहाँ औरत को मान सम्मान होए वहाँ बरकत रहे, ने देवता ना भी वास करे। नारी का बिना संसार की कल्पना असंभव है, यह अपन यूं कहा कि अपना समाज की धुरी है नारी। नारी का बिना कई भी काम पूरो नहीं होवे, यो सब कुछ जानते हुए भी कई का ऐसा मनक रहे जो औरत के बात बात पे अपमानित करे, उनको शोषण करे, या यूं कहूँ कि जो औरत को सरल सो जीवन रहे उसमें कठिनाई होन पैदा करे। कई महिला ना ऐसी है जो हिंसा की शिकार हुई जाए और बिचारियों बेघर भी हुई जावे, उनके रहने का सरून या कहूँ कि घर जो अपनों सर छुपाने के लिए छत तक नहीं मिले। ऐसी महिला उनकी परेशानी के देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर जिके की सखी के नाम से भी जानने जावे हैं उनकी शुरुआत करी गई। इन्हीं योजना में जो अपनी ऐसी बहन हो रहे जो हिंसा या संकट से पीड़ित रहे, जिका दायरा में छोटी बालिकाओं भी आवे, उनके चिकित्सा, कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुलिस सहायता और अस्थाई आश्रय जैसी सभी आवश्यक सेवा हों एक ही छत का नीचे दी जावे। कहने को मतलब है कि जो पीड़ित महिला हों रे उनके एक ऐसो आश्रय दियो जावे जहां उनकी हर प्रकार से देखभाल करी जावे। इन्हीं एक छत का नीचे जो है महिला होन समूह में रहे और सुरक्षित भी रहे है, और जहाँ सुरक्षा की भावना महिला में उत्पन्न हुई जाए तो डर अपना आप भगी जाए। अने अपना डर के भगाने के लिए या सहायता पाने के लिए बेनना राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पे फोन करी के सहायता भी प्राप्त करी सकती है। तो बेनहोन घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज, छेड़छाड़ या फिर और भी किसी प्रकार से आप प्रताड़ित हुई रही हो तो बिल्कुल मत शर्माओ या फिर बिल्कुल मत डरो। सखी है नी, सखी आपके सुरक्षा प्रदान करेगी और आपकी समस्या को समाधान भी करेगी। एक फोन और थोड़ी सी आपकी हिम्मत आपकी जिंदगी बदली सकती है। तो बेनहोन डर के भगाओ, सुरक्षा के अपनाओ और अपनो जीवन संवार लो। अब बात तो अपन और करांगा पर पहला कुछ संदेश अपन सुन ला।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भाई बहनों देखो, आज है सोमवार को दिन, आने सोमवार में भी श्रावण को सोमवार भगवान शिव की स्तुति करने को दिन। तो देखो अपन अपना स्टूडियो से भी बैठे बैठे भगवान शिव की स्तुति करा और सुना यो लोकगीत जी के गायो है बेन कला बाई ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
4: भाई बहनों, अपनों जो निमाड़ क्षेत्र है वो कपास की फसल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आने सफ़ेद सोनों कही जाने वाली नकदी फसल कपास हमारा बहुत सारी जो किसान भाइयों ने उनकी आजीविका को साधन है। कई सारा लोग कपास की खेती कर रहा है, तो कपास की खेती में अपन कपास की देखभाल कैसे करा, आने कैसे अपना कपास का अच्छा उत्पादन पावा, इन्हें बारे में हम वार्ता सुनांगा, जिनमें वार्ताकार है अतुल अत्रे। तो सुना अपनी वार्ता।
5: सभी किसान भाइयों को आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से मेरा नमस्कार। मैं अतुल अत्रे, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ। किसान मित्रों, पिछले 24-25 सालों से आप लोगों के साथ क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और आप जो मुख्य बात के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ वो है कपास फसल। कपास फसल जिसे हम निमाड़ अंचल का सफ़ेद सोना भी कहते हैं। सफ़ेद सोना हमारे क्षेत्र की नकदी फसल के रूप में होती है, और ये आज हमारे किसान मित्रों द्वारा कई क्षेत्र कई एकरेज में यह लगाया जा रहा है। अभी जो कपास की फसल की बुआई हुई है वो लगभग 15 मई से शुरुआती होकर 30 जून तक चली है, जिसमें किसी किसी जगह 60 से 70 दिन का कपास हो गया है, कहीं पे 90 से 100 दिन का होने में आ गया है। किसान मित्रों, अभी बारिश का दौर चला, जिसमें हम लोगों द्वारा कपास के ऊपर रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने में बारिश की वजह से हम छिड़काव नहीं कर पाए। आज हम लोगों को छिड़काव करने पर भी यदि रिजल्ट्स कम आए तो उसका जो मुख्य कारण हम लोग जो फील्ड में देख रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, वो है कि बारिश की वजह से खेतों के अंदर घास की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी या किसान द्वारा कुछ भी स्प्रे किया जा रहा है तो वह हरे मच्छर, माहू, वह सफ़ेद मच्छर, ये सब नीचे पौधों में जाके छुप जाते हैं, और जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है वो वापस आके कपास पे बैठ जाते हैं और पत्तों का रस चूसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कपास की बढ़वार रुक रही है। इसके नियंत्रण के लिए किसान मित्रों को एक सलाह है, सबसे पहले आप अपने खेत में निंदाई का कार्य करें और बखर चलाएं, ताकि बारिश के बाद बखर चलाने से जब मिट्टी का पलटना होता है तो उसके अंदर हवा की मात्रा जब जाएगी तो जड़ों के अंदर जब हवा एरिशन बोलते हैं जब जाती है तो पौधों में बढ़वार कर चालू होता है। दूसरा, रोग नियंत्रण के लिए आज हरा मच्छर, माहू और सफ़ेद मच्छर, यह निशाचर प्रजाति के कीड़े होने के कारण अंधेरी रातों में इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कहीं ना कहीं इनके निम्फ या इनकी प्रजाति की साइकिल जो होती है, जीवन प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए सबसे पहले मेरी सलाह है कि आप नीम ऑयल एजेडिरेक्टिन 10,000 ppm का 20 ml प्रति 15 लीटर पंप में घोल बना करके अच्छे से ऊपर और नीचे पत्तों के साथ पूरे अच्छे से पौधे को स्प्रे करें। उसके 4 से 5 दिन बाद आप जो मार्केट में आपको केमिकल्स या रसायन मिल रहे हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या इमिडाक्लोप्रिड 70%, साथ में जो है आप डाइफेन थुरान 47.8% ले लें और बारिश की वजह से थोड़ा पौधों को सुरक्षा के दृष्टि से सूक्ष्म तत्व जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं वो मिक्स कर लें और एक हल्का फफूंदनाशक का, ये चारों का मिलकर आप छिड़काव करेंगे तो आपको सुरक्षा भी मिलेगी, फंगस से भी सुरक्षा मिलेगी और आपकी कीड़ों से भी सुरक्षा मिलेगी। और भी बाज़ार में कई प्रकार के रसायन ऐसे आते हैं जिनका कॉम्बिनेशन भी है, या आप कॉम्बिनेशन करके आप जब डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप जैविक प्रबंधन में जाना चाहते हैं तो जैविकी प्रबंधन के तहत आप बीवेरिया बासियाना, वर्टिसिलियम लेकानिल और मेटारजन एनिसोपली करके ये फंगस होती है, यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो यह फंगस पत्तों के ऊपर फैल करके जो भी रस चूसक कीटों के निम्फ हैं, अंडे हैं, उनके ऊपर कवर करके उनको खत्म करते हैं। और जैसे इसे कीट पतंग को एक बूंद भी या एक अंश भी इन फंगस का लग जाता है तो वो उसके पूरे शरीर पर फैल कर के उसको खत्म कर देता है। तो आप इस प्रकार से भी आप अपने खेतों में सुरक्षा कर सकते हैं। किसान मित्रों, रस चूसक कीट जो है कपास की फसल की हाइट को रोकने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए एक मुख्य कारक होते हैं, तो अभी हमको मुख्य रूप से उनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फंगस और माइक्रोटेन इसलिए मिलाया जाता है कि बारिश की वजह से जो बूंदे पानी में नीचे गिरती है और उसकी वजह से मिट्टी जो उछल करके पत्तों पे, नीचे के पत्तों पे और नीचे के फल फूलों पे लगती है तो वहाँ से फंगस डेवलप होती है। तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा फफूंदनाशक और एक सूक्ष्म तत्व, ताकि पौधों के अंदर फल फूल बढ़े, फूलों की संख्या बढ़े और फल का साइज बढ़े, ताकि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। तो इन चीज़ों को आप करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। घास का, जैसे मैंने बताया, घास का नियंत्रण कीजिए, रोग कीट का नियंत्रण कीजिए। और अभी जो है जिनके 60-70 दिन पे या 90 दिन के आसपास की फसल है, उन लोगों ने यदि आपका तीसरा खाद का डोज यदि नहीं दिया है तो वो लोग जो है अभी आप खाद में अमोनियम सल्फेट और पोटास, अमोनियम सल्फेट 50 किलो और पोटास 25 किलो प्रति एकड़ के माध्यम से आप दे दें, जिसकी वजह से आपके फर्टिलाइजर में देने की वजह से आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी आएगी। उत्पादन वृद्धि के लिए आप अभी ये कीट का कंट्रोल करने के बाद जो है आप एक समस्या और फसल में देखने को मिल रही है कि मौसम की वजह से कपास की छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी कलियाँ गिरने लग रही है, तो उसको भी हमें रोकना है क्योंकि वही हमारा मुख्य फल है। उसको रोकने के लिए आप जो है नेफ्थेलिक एसिड, एसिड करके आता है NAA, साथ में आप 13045 और बोरान का आप स्प्रे करेंगे तो जिसकी वजह से फूलों की संख्या में वृद्धि भी होगी और आपके फलों का साइज भी बढ़ेगा। तो ये सब आप करिए और हमारे जो निमाड़ अंचल का सफ़ेद सोना है उसका उत्पादन बढ़े। इसके लिए आप लोग खेत के अंदर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कि कौन सा रोग है, कौन से कीट लगे हैं और निंदाई का कार्यक्रम कीजिए। दूसरा, मौसम विभाग द्वारा जैसा कि बताया गया है कि अभी 17 तारीख से 20 तारीख के बाद में बारिश का दौर कम होने लग जाएगा, तो कृपया कर जो भी आप छिड़काव करें उसको आप सुबह जल्दी से करें, ताकि सुबह के मौसम में पत्तों के अंदर के जो रोम छिद्र होते हैं वह खुले होते हैं और जो भी हम छिड़काव करते हैं वो जल्दी से वो पत्ते अपने माध्यम से अंदर लेके ले लेते हैं, और उसकी वजह से जब उसमें लंबे समय तक वो, जब हमारे बीच छिड़काव किया गया है वो जब पत्तों पर रहता है तो कोई भी रस चूसक कीट आके उस पर बैठता है, वो उसको जैसे रस चूसक कीट खाएगा वो मर जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम करें, हमारा उत्पादन बढ़ाएं और किसान खुशहाल रहें। एक निवेदन किसान भाइयों से और है हमारे जो खेतों की मेड़ पर जो हैं, यदि खाली पड़ी है तो वहाँ पर आप दो या तीन प्रकार के पेड़ ऐसे लगाएं जो अभी आपको आपकी मेड़ को भी बचाएंगे और साथ में आपको गर्मी के मौसम में छाया भी दें। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप इसको करें, और आकाशवाणी केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुना। अतुल अत्रे का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।
4: कपास की फसल की देखभाल अपन कैसे करा, इना विषय पे अभी अपने वार्ता सुनी। वार्ताकार था अतुल अत्रे। अन देखो, कपास की फसल का साथे साथे अपने अपनी देखभाल करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम एकदम ऐसो हो रही है कि जहाँ देखो वहाँ सर्दी, जुखाम और बुखार अधिकतर घरों में देखने गए रहा है। अने यदि अपने लगे कि अपने सर्दी होने की संभावना है तो सर्दी जुकाम का शुरुआती लक्षण में अपन यदि अपनी देखभाल कर लेंगा तो हो सकता है कि अपने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा। अने सर्दी जुकाम में कुछ घरेलू नुस्खा अपन अपने ला, जैसे कि एक गिलास पानी में अदरक, कुचली के तुलसी का कुछ पत्ता और एकाध काली मिर्च को जो पाउडर है वो, और दो तीन लौंग अच्छी तरह डाल के उबाली ला और इनको काढ़ो बनाई ला। जब यो काढ़ो गुनगुनो रहे तो इके पियो, खराश और जकड़न दूर हुई जाएगी। अने देखने में रही हो कि आजकल संक्रमण घणो फैले, तो संक्रमण होने को खतरो जब अपने दिखे तो ऐसा में हल्दी वालों दूध पीने से संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ी जावे। तो हल्दी को दूध गुनगुनो करके जरूर पीनो चाहिए। गला की खराश और खांसी हो तो अदरक का रस में शहद मिले के चाटने से आराम मिले। अने जब भी सर्दी जुकाम शरीर को लगे तो दिन में जितनी बार भी पानी पियो तो गुनगुनो पानी पियो, इससे सर्दी में राहत मिले। अने 4-5 लहसुन की कली होन के घी में तली के खाने से सर्दी होने का पेला यदि आप खाई लोगा तो घनी राहत मिली जाएगी। अने 7-8 मुनक्का पानी में अच्छी तरह से उबाल लो, जब पानी आधोरी जावे तो मुनक्का जो है उनके चबे के खाई लो और पानी के गुनगुनो करके पी लो। तो भाई बहनों, यदि छोटा छोटा घरेलू नुस्खा अपन अपनावांगा तो सर्दी जुकाम से बची पावांगा। आना अब बखत हुई कि अपन एक लोकगीत और सुन ला। इना लोकगीत गाए बहन हेमलता उपाध्याय ने।

0: भाई बहनों देखो, त्योहार होने को समय आ रो है। आने न त्योहार होन में अपन कई मिठाई घरे ज बनेला तो कितरो अच्छो रहेगो। अने मिठाई भी ऐसी जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहे, जैसे कि काजू कतली बनाने के लिए अपने ना तो ज़्यादा सामान चाहिए ना ही ज़्यादा परेशानी हुई बनाने में। तो इसके लिए अपने कई कई सामान चाहिए सुन लो। काजू ले लो 200 ग्राम, शक्कर 1 कटोरी, घी 2 से 3 चम्मच, इलायची को पाउडर और चांदी को वर्क लगाने की इच्छा हो तो वो ले लो। सबसे पहला अपने काजू के पीसी के पाउडर बना लो, पर पीसते वक्त यो ध्यान रख जो कि मिक्सर थोड़ी थोड़ी देर रोकी रोकी के चलाता रहो, क्योंकि सीधो यदि चला तो रहांगा तो काजू तेल छोड़ेगा। फिर शक्कर में थोड़ो पानी डाली के एक तार की चाशनी बना लो। जब चाशनी जैसे वो चिपचिपो लगने लगे तो थोड़ो गैस कम करी दो। अनैनी चाशनी में काजू को पाउडर, 1 चम्मच घी, इलायची को पाउडर डाली के अच्छी तरह से चलाता रहो। जब 5-7 मिनट अच्छा चला होगा तो ये जो मिश्रण है वो कढ़ाई छोड़ने मंडेगो। जब मिश्रण कढ़ाई के छोड़ दे तो आँच बंद कर दो। अब मिश्रण में के थोड़ो सो हाथ अपन लगेला असो ठंडो ही जावे तो फिर एक थाली के उल्टी रखी दो। अने उन्हीं थाली पे घी लगाई के जो मिश्रण अपन ने लियो थो उके लोया की तरह थेपी दो और बेलन से बेल लो। जितनी मोटी आपके कतली चाहिए उतो मोटो बेली लो। और इका बाद इका पे जो अपन ने वर्क लियो है चांदी को वो चिपकाई दो। चिपकाने के बाद मन चाह आकार में अपनी जो कतली है उनके आप काटी लो। इका से कहीं होएगो कि आपकी जो काजू कतली है वह बनी के तैयार भी हो जाएगी और कई दिन तक वह सुरक्षित भी रह सकेगी। तो भाई बहनों अपन काजू कतली बनावा ने अपनो त्यौहार मनावा। अने आगे की बात करने से पहला एक संदेश भी अपन सुन ला।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
0: भाई बहनों, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर

18 क्विंटल, भौरियो 5235 से 5680 रुपया, मॉडल भाव 5680। अने भाई बहनों देखो, मंडी भाव तो अपन ने जानी लिया, और मंडी भाव का बाद में एक लोकगीत और सुनना तो कसो रेगो। सुना लोकगीत जी के गायो है बहन शिवानी चौरसिया ने।

0: इना मीठा सा लोकगीत का सातेज अब कार्यक्रम की समाप्ति को समय भी आई गयो है। तो मनीषा शर्मा के दोविदा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी। रात्रि के 8 बजने को है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में अब हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू
4: मुकुल जी। पिछले 2 दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
5: देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे और उनके ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहां से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज एक छोटा सा ग्रुप 3 देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील जो देशों को भी जोड़ा जाए। तो उसमें ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170-180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोर देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश की पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। ये चीज सामने आ गई है
4: जी।
5: पहले ये कहा जाता था या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही हैं पर हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगें, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं
4: जी। मुकुल जी, भारत की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है, तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
5: देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस जिस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उस

0: उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
1: जी।
0: ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है क्योंकि तापमान ऊंचा है जैसे हमारे यहाँ होता है, कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है पर अपनी लाइफस्टाइल जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं। इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेके भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफस्टाइल करके कि भाई देखो अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते।
1: आपने लाइफस्टाइल की बात की है तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी।
0: देखिए इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए, पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी, कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
1: अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों की जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
0: देखिए अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए। चाइना का विकास हमारे से पहले हुआ है
1: जी,
0: उनने एक दिशा दिखाई कि भी जरूरी नहीं है कि उसी तरह से शहर बने, उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा, हमको ये देखना है, पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, पर हमको जो जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उनने हमसे कहा है, जो उनके लिए फायदामंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। और जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइफ से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर, उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
1: मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मंच हो या अंतरराष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिशें की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
0: देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कहा, अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स समिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है, उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
1: जी।
0: तो वहाँ ये बात आ रही है कि मिसाल जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए पर कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर, डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए, ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
1: मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को, और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती हैं, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो।
0: देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। ये देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
1: जी।
0: किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए
1: जी,
0: कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है, क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन ऑक्सीजन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा।
1: जी मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म स्वामी का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्द रचना अमित खन्ना के, संगीत राजेश रोशन का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: आप सुन रहे थे फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

फिल्म शंकर हुसैन में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भगवान महाकाल की तीसरी शाही सवारी की रेडियो रिपोर्ट। उज्जैन की पावन धरा से जहां कण कण में महादेव का वास है, जहां हर धड़कन में गूंजता है हर हर महादेव,

0: और जहाँ स्वयं राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं, आज का यह अवसर केवल एक शाही सवारी का अवसर नहीं बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और भक्ति के उस विराट संगम का साक्षी बनने का अवसर है जिसका इंतजार देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को रहता है। हम आपको सुना रहे हैं उज्जैन की पावन नगरी से रीटी रिपोर्ट। उज्जैन में सावन की तीसरी सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी निकाली जा रही है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन आयोजित।
1: जय श्री महाकाल। मैं पंडित सुदर्शन आयोजित आप सभी को बाबा महाकाल की यह जो सवारी है जो आज विशेष संयोग नाग पंचमी के शुभ अवसर पर निकल रही है, लाखों की भीड़ बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए लालायित है। जहां एक और वर्ष में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा महाकाल की उस सवारी को देखने के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में दूर दूरस्त गांवों से, कस्बों से, शहरों से लोग आकर के बाबा का दर्शन करने के लिए आतुर हैं। सभा मंडप में शासकीय पुजारी द्वारा बाबा का पूजन अर्चन करवाया गया, तत्पश्चात पालकी सभा मंडप से निकल करके मुख्य चौराहे पर आई जहां पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कड़ाबीनों की आवाज के पश्चात आप देख रहे हैं उद्घोष करता हुआ दल और बैंड दल पर ओम नमः शिवाय की धुन बजाई जा रही है। बाबा महाकाल का यह आंगन जो कि आज विशेष अवसर होने के कारण हजारों नहीं लाखों भक्तों से भरा हुआ है, चारों ओर जय जयकार गुंजायमान हो रहे हैं। शनि शनि पालकी शिप्रा तट की ओर अग्रसर हो रही है। शिप्रा तट पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन एवं उनका पंचोपचार पूजन किया जाना है। बाबा की पूजा अर्चना, पूजन अर्चन, पंचोपचार पूजन के पश्चात बाबा पुनः गोपाल मंदिर की ओर अग्रसर होंगे जहां हरि और हर का मिलन होगा। हरि हर के मिलन के साथ ही एक अद्भुत संयोग बनेगा जहां स्वयं महाकाल भगवान गोपाल जी से मिलेंगे और वहां भगवान की आरती की जाएगी। रोड के दोनों ओर असंख्य भक्त उमड़कर अपने राजा को एक टक निहारने के लिए आतुर हैं और भगवान के दर्शनों के लिए आतुर हैं। जहां पालकी शनि शनि ढाबा रोड से आगे बढ़ती हुई गोपाल मंदिर पर भगवान का हरिहर मिलन हुआ, पुनः सराफा से होते हुए पालकी अपने नियत समय से पूर्व 7 बजे बाबा महाकाल के आंगन में पहुंच गई और वहां बाबा का पुनः एक बार सभा मंडप में पूजन अर्चन किया जा रहा है। पूजन अर्चन करने के पश्चात बाबा की पालकी अगले सोमवार के लिए पुनः भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार रहेगी। आज का यह दिन विशेष है, आज का यह दिन अद्भुत है। जहां एक और वर्ष में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर भगवान की सवारी का अद्भुत दर्शन, वही यह तीसरी सवारी अपने आप में एक अद्भुत नजारा लिए हुए है। भगवान मन महेश, भगवान चंद्रमौलेश्वर और साथ ही तांडव नृत्य करती हुई प्रतिमा भी आज सवारी में शामिल है। भक्तों का जनसैलाब, भक्तों की भावना, भक्तों का वह भक्तिमय एक सागर चारों ओर दिख रहा है। सभी आला अधिकारी जो बाबा की सवारी में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन या होमगार्ड, बाबा महाकाल की सवारी के साथ साथ नागचंद्रेश्वर के सुगम दर्शनों की सुव्यवस्था पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी संभाल रहे हैं। चाहे हमारे बीच पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता जी हो, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन जी या पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा जी, साथ ही आदरणीय जगह के एडिशनल SP और कह सकते हैं कई थानों के थाना प्रभारी और कई अलग अलग जिलों से आए हुए पुलिस बल के पुलिसकर्मी कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही जो महाकाल की सुरक्षा टीम है वह भी पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है, जिसका सीधा सीधा सफल निरीक्षण कर रहे हैं नगर के जिलाधीश श्री रोशन कुमार सिंह साहब। व्यवस्थाओं को बनाने की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को बनाने के लिए महाकाल मंदिर के प्रशासक IAS प्रथम कौशिक जी पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आज यह अद्भुत संयोग, जब एक और नागचंद्रेश्वर के दर्शन हो रहे हो और दूसरी ओर बाबा महाकाल की यह तृतीय सवारी सुगमता के साथ दोनों व्यवस्थाओं को संभालता हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के हमारे आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा जी। और साथ ही साथ अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा महाकाल मंदिर, पूरा महाकालेश्वर मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की गुंजायमान से, तालियों की गुंजायमान से, जयकार की गुंजायमान से गुंजायमान है। अंत में ये कहूंगा कि महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। आकाशवाणी के माध्यम से आप प्रति सोमवार इस सीधे प्रसारण को सुन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।
0: उज्जैन में श्रावण भादव मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों में तीसरी सवारी के दिन ही मंदिर के तृतीय तल पर स्थित प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए खुलते हैं। श्रावण मास की तीसरी सवारी और वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर दर्शन का दुर्लभ योग। राजाधिराज महाकाल का चांदी की पालकी में चंद्र मौलेश्वर व मनमोहक स्वरूप में नगर भ्रमण।

उज्जैन की गलियों से लेकर पावन मां शिप्रा के तट तक आज आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है। ये केवल एक दृश्य नहीं बल्कि महाकाल के प्रति करोड़ों हृदयों की अटूट श्रद्धा की अनुभूति है। बाबा महाकाल की ये सवारी हमें यही संदेश देती है। राजा वही है जो अपनी प्रजा के बीच आए, उनका हाल जाने और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।

आज की इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। महाकाल से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख शांति रहे और हर मन में श्रद्धा का भाव और बाबा महाकाल की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ उज्जैन की पावन धरा से हम आपसे लेते हैं विदा।

0: अभी आप सुन रहे थे महाकाल की तीसरी शाही सवारी की रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45
1: याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
3: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
4: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
2: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
5: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
7: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। द रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच

0: की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल धन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग। दिस

आप सुन रहे थे ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में शेवान रिज़वी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था हमसाया। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह

0: कैसे देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहाँ कहाँ देखता है?
1: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके. उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का. उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए. क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा. तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है. मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए. हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में. हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार
0: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
2: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
0: जी कविता मैम बताएं क्या जवाब देना चाहेंगे इसका.
1: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए, उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस, रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
0: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है, पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
3: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले पांच वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
0: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेस दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
0: बैनर लगे होते थे.
3: इनफैक्ट यदि आप सारे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी.
0: जी.
3: तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया.

0: गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वह है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिजाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म है जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुकमाइशो, स्पाइसजेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्ष की है।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन के हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप इस पर बता
1: दें। जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: जी बताइए प्लीज उसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
3: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है?
1: जी
3: करके।
1: जी जी जी, FSSAI का।
3: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधरे करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
0: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट एड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है 5 लाख से ज्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4000 से ज्यादा एनआरआईज हैं। अब इसमें जो वीसी फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर मतलब एनआरआई जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो यूएसए, चाइना, दुबई कई ऐसे देश हैं जो हमारे वीसी के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन्स के ऑर्डर है उनकी लोकल लैंग्वेज में मराठी में गुजराती में तमिल में जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: हेलो, नमस्कार
1: जी श्रीकांत जी। श्रीकांत जी सवाल
4: जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
4: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है? मतलब
1: कविता मैम आपसे सवाल है ये
3: जी, क्वेश्चन ये है मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया वही उनका सवाल है ना
1: जी।
3: हाँ जी, मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो सेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली। अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट प्रीपैकेज्ड फूड का लेबल का वो है कुछ टैम्पर, बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है
1: जी। अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
0: जितने भी उपभोक्ता है उनका यह अधिकार है कि उनकी किसी भी वस्तु से किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी।
0: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, ये टोल फ्री है
1: जी।
0: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है, व्हाट्सएप नंबर है 8800-1915-8800-1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हम सलाह ये देते हैं कि जी आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहां डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप एनसीएच में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले एक वर्षों में एनसीएस के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है
1: जी। और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से, उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा।
3: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है, सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है, अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
0: BIS का जो हॉलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
0: इसमें बेसिकली तीन निशान है, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
5: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं क्या हम लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS में हम क्या बोलते कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी पूछिए।
0: जी आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी, आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहां कीजिए, वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फोन पर और अपनी

0: तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल अफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फोर्सकॉट पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर। अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है। उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमआरपी, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहां से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
0: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है, लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल। हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच?
1: जी कविता जी, समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम मन भावन।

पेड़ की डाली में झूले का मजा आया है, सावन का सुहाना मौसम साथ लाया है। बूंदों की फुहारों से महक उठी जमीन, दिल में फिर से प्यार का पैगाम लाया है।

फिल्म बहू बेगम का एक गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और सुनना चाहता सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा ने। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला, अनुश्रीष, अशोक, दीपक और अस्मा। इसी गीत को पसंद किया कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो उबैद, रजिया जुनैद, अलीना आयत और मुआज मंसूरी ने। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास खत लिख भेजा था जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और आसिफ ने। सोमानी नगर इंदौर से बिहार राष्ट्रीय रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, टोनी और निधि। मंदसौर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान। महाराष्ट्र से शत्रुघ्न, वाल्मीकि, नीनाजी, स्वप्निल और अजय। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर झोंतले और आरती झोंतले। लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास बेटी से खत लिख भेजा था राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हादिया, अस्मा सालिया, शोएब मुस्तबा, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली ने।

एक गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में, शब्द रचना संतोष आनंद की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुना चाहा था कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राजश्रीमाली, कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी अंकिता अनिकेत और माया चौहान, चंदनगर सतारा से सतीश, आतिश, स्वाति, वर्षा, भ्रमण और श्रमण, सनावर से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, बुरहानपुर से मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन और तैमूर तड़वी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। इसी गीत को पसंद किया आरती जासमीन और प्रयागराज ने। राजकोट से साथी हैं मधुसूदन भट्ट भी, जिला लातूर हुनसे उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो दस्तगीर, शेख फैज नबी, साकिर इस्लाम भी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया बिस्लबी, गतर शेख और इनके साथ हैं तालुका बिलोली जिला नदेड़ से चांदनी अयूब और अमन सैयद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भगवत वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा था। संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया केशरी, हर्ष मिताक्षी और सोमती बाई ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल ने। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रकीब पवार, साकिब पवार, हसनैन पवार, ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगनाले, वनीता गंगनाले, छोटू पूजा, रोशनी, अजय और बमिका गंगनाले, जिला खंडवा से अशोक, वंदना, भूपेंद्र,

और तनुश्री आरोही और कान्हा ने। अब हम आपको सुना रहे हैं वो कौन थी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आप सुन रहे थे फिल्म वो कौन थी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को सुना चाहा था धर्मपुरी जिलाधार से शेख फही मोहम्मद मोहम्मद तस्लीम शेख मुजफ्फर अयान फैजान सुमेरा कश्यप साइमा हसनैन और खुशी ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शवाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शवाना आलम चांदनी नाज सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही फिरोज आलम नाज परवीन और अर्श इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाकिर मुश्ताक अहमद बेबी मंतशा रमेश गौड़ और शादाब खत्री। इसी गीत को सुनना चाहता पालदाना का इंदौर से हसीन नबी मंसूरी अमीन नबी और मोहम्मद रफी मंसूरी ने। छत्रपति शाहू नगर इंगोली से रामचंद्र इंगोले सिद्धांत इंगोले टिक्कू रमाबाई सुरेंद्र मयूरी सुरभि और मंजूषा इंगोले ने। छत्तीसगढ़ से साबित खान सत्या साहू सावित्री देवी प्रतीक कुमार और धर्मेंद्र प्रजापति ने। स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कवचाले नेहा सीमा सबीहा कनक पूजा सुषमा और साथियों ने। लापरिया भीरू इंदौर से भी इस गीत को पसंद किया अनिल बामनिया प्रमिला नंदनी मुस्कान नीलम सावर कृष्ण कुमार ऋतिक कुणाल और केतन परिवार ने। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से गोपाल कानुगुला महेश्वरी और इनके साथियों ने। यवतमाल से राहुल सरला विशाल चेतन रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनजाना का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल सुर में। दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया। नवाज कॉलोनी इंदौर से संतोष रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, पविता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, देविका चौधरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। मयंक रेडियो श्रोता संघ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। इस गीत को पसंद किया देवास से मुरालीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा और शंकर लाल ने। इस गीत को सुना चाहा था कटराज पुणे महाराष्ट्र से महेश, मिंतांशु और आदित्य ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए अभिषेक व्यास का गिटार वादन, राग है यमन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अभिषेक व्यास का गिटार वादन राग था यमन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजना

0: गांव से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।